इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप।

0: ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: ये कहा जाता है ना, सुख दुख का साथी, और ये एक इंसान हो जरूरी नहीं है वैसे तो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून कॉल राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ख्याल कुछ ऐसा आया कि हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो हम उस इंसान के पास जाते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और हम हमारी सारी खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन पता है क्या, जब हम उदास रहते हैं, when we are at the lowest, तब हम उस इंसान के पास जाते हैं जो हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो हमें समझ सकता है। नहीं और ऐसा बहुत कम होता है कि ये जब खुशी और दुख शेयर करने वाला इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में, वो एक ही हो। है क्या ऐसा कोई? अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी की हर खुशी हर गम शेयर कर सकते हैं ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो। और वैसे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि वो इंसान कौन है आपकी ज़िंदगी में। चलिए इस खूबसूरत ख्याल के साथ आपकी खुशियाँ बांटने के लिए और आपके दुख सुख के लिए हम भी यहाँ पर हैं, और उसी हिसाब से हम यहाँ पर उसी मोमेंट के हिसाब से गाने भी बजाने की कोशिश करते हैं। तो बस सिंपली आफ्शीन माइक से दिल तक शो की शुरुआत करती है राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: ग्रूवी फील और कैची वाइब के साथ सुनो जब तलक।

गाने को गाया है अरिजीत सिंह और अकासा ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। सुनते रहिए जब तलक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vietvala murga. Milci, murga.
1: हेलो
2: हेलो मनोज जी।
1: हाँ जी
2: सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपने गाड़ी जीती ना सर्विस के लिए
1: जीती।
2: हाँ सर, सर नहीं सर, वो अभी तो ठीक नहीं हुई है सर। मेरी बात हो गई है, 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है ये।
1: 40,000 रुपए?
2: हाँ सर, वो मेरी कबाड़ी वाले से बात हुई है, 40,000 रुपए दे रहा है सर वो, और मना लिया उसे।
1: कोई तीसरी सर्विस है? किस चीज के कबाड़ी?
2: नहीं, तीसरी सर्विस है, मेरे को मालूम है। आप देखे आए ना गाड़ी, ये सर्विस के लिए हमको दी थी ना आपने, तो उसकी बात हो गई है। 40,000 रुपए देने को तैयार है कबाड़ी वाला।
1: कबाड़ी वाला मतलब किस चीज के देने के लिए तैयार है? गाड़ी नई है, सर्विस तीसरी हो रही है।
2: नहीं सर,
1: शॉप में दी है कबाड़ी, मतलब समझ नहीं आ रही मेरे।
2: मैं समझाता हूँ सर। आपकी जो गाड़ी थी ना
1: जी,
2: उसकी नॉर्मल सर्विस हो गई थी, बढ़िया चकाचक हो गई थी सर। हमारा जो ये मैकेनिक है ना छोटू, ये टेस्ट ड्राइव पे ले गया था उसको। अच्छा, जब ये गया है ना, तो ये जो रेल की पटरी आगे पड़ती है ना हमारे वर्कशॉप से, रेलवे पटरी पे इसकी गाड़ी, इसने गाड़ी बंद कर दी सर पटरी पे।
1: अच्छा,
2: इस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं सर, वहाँ से ट्रेन आ रही थी सर, आपकी गाड़ी के परखचे उड़ा दिए उसने। अब मैं तो उसको चपेट मारी है, रो भी रहा है बैठ के। तो वो कबाड़ी वाले को दिखाया, जो सारा तो सामान बिखर गया है, जो बचा है उसके 40,000 दे रहा है।
1: पागल हो गया है तू क्या?
2: सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 40,000
1: रखा तो नहीं, कितनी देर से बकवास कर जा रहा है
2: सर। ट्रेन की पटरी में अटक गई, हम क्या कर सकते
1: हैं? ट्रेन की पटरी
2: आपको
1: बात वात की बात नहीं है मेरी, सुन तो।
2: मैं
1: कोर्ट से लेकर सब सबको अंदर कर दूंगा, बंद करा दूंगा गैराज पर। आज छोटू जाएंगे पाई लेने, रोटी का काम क्या है? अच्छा
2: सर, सर सर इतना गुस्सा नहीं मनोज जी, इतना गुस्सा नहीं। सर पहली बार मेरी हालत बुरी हुई है मनोज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड।
1: सर सर सर
2: सर सर, आपकी गाड़ी सही सलामत वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दी थी। एक मजाक चल रहा था, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बन गया है आपका। मेरे साथ हंस के बोल दीजिए आप।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
0: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

मैं जानती थी अब तक क्या आपने प्लान नहीं किया ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्टरनून का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको ओटीटी पर क्या देख सकते हैं फॉर दिस वीकेंड मैंने ये रेकमेंड किया है, लेकिन आप कतर में क्या कर सकते हैं उसके लिए भी मैं आ गई हूँ। देखिए एक हफ्ते से नहीं, मेरे ख्याल से दो हफ्ते से मैं बता रही हूँ इस सर्कस के बारे में, फिर से बताऊंगी फोंटाना सर दुलेबान कि भाई ये वाला सर्कस विच इज अ वाटर सर्कस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नॉट ओनली इन कतर बट ऑल्सो मिडिल ईस्ट। मतलब इतना खूबसूरत एरियल परफॉर्मेंसेज है, थ्रिलिंग सर्कस एक्ट्स है, ऐसा जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है सर्कस। मतलब ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए भी होता है ना। सो ये हयात प्लाजा में जो हो रहा है ना ये 31 मई तक ही है, और यहाँ पर जो है आपको टिकट्स निकाल कर जानी है, तो यू शुड बेटर बुक योर टिकट्स इन एडवांस बिफोर यू गो हियर। अच्छा इतना ही नहीं, रेसिंग का बड़ा शौक है आपको, सो जाइए लुसेल कार्टिंग में जाइए, क्योंकि वहाँ पर F1 सर्किट हैज़ नाउ ओपन डोर्स फॉर पब्लिक कार्टिंग सेशंस। यू हर्ड इट राइट, और ये सिर्फ वेनसडे से लेकर सैटरडेज तक होता है, मतलब ये वीकेंड अब है। अब जाइए, यहाँ पर भी जाने के लिए आपको टिकट्स बुक करनी है, 125 कतरी रियाल पर पर्सन है। एंड यू नो यार वो एक अलग ही क्रेज होता है नहीं, जो को कार्टिंग होता है वो, और लुसेल का सर्किट बहुत अच्छा है, इट्स लाइक वर्ल्ड क्लास लेवल का है। वहां पर आपको अगर गो कार्टिंग करने का मौका मिल रहा है देन व्हाई मिस दैट एंड डू इट बिफोर द वेदर गेट्स वर्स्ट, है ना। मैं हूं आफरीन आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची, माइक से दिल तक, इट्स हॉट।

देखिए क्योंकि वीकेंड है तो एंटरटेनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बनता है कि नहीं मेरा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग। जर एंटरटेनमेंट का जिम्मा तो हम हर रोज लेते हैं, लेकिन हम जब नहीं रहेंगे वीकेंड पर तब आप कैसे एंटरटेन होंगे? सो वेल, एंटरटेनमेंट यानी ओटीटी की दुनिया में वैसे तो बहुत कुछ नया है, लेकिन टुडे आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट दिस वन पर्टिकुलर सीरीज जो मैंने वीक डे में बैठ के बिंज वॉच करके खत्म की है। सो जस्ट इमेजिन के कितना ज्यादा ये ग्रिपिंग है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट मटका किंग ऑन एमेजॉन प्राइम। विजय वर्मा की दिस सीरीज इज समथिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट, सीरियसली। मतलब अगर आप हर्षद मेहता स्कैम ये देख चुके हो, तेलगी स्कैम ये देख चुके हो, ऑन द सेम लाइन्स दिस इज मटका किंग। ठीक है, मटका किंग इज वॉट इट इज अबाउट। दिस पर्सन रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, एंड एंटरप्राइजिंग कॉटन ट्रेडर जो है जो मुंबई में एक नया गैम्बलिंग का खेल शुरू करता है जो वो मटका कह के पुकारता है, उसे बुलाता है। ठीक है, एंड आई थिंक सो दोज हु बिलोंग टू बॉम्बे और पुराने वाले हैं दे नो दिस वर्ड समवेयर, कहीं तो सुना है, इट्स फेमिलियर, बट हाउ दैट स्टार्टेड वो पूरी कहानी इसमें दी गई है। वेल, बता दो ये जो डायरेक्टर है इसके, दैट इज नागराज मंजुले। नाउ इफ यू नो ऑल एनी मराठीज आउट देयर, और अगर आपने सैराट देखी है, ठीक है, सैराट के जो डायरेक्टर थे नागराज, उन्होंने ही ये डायरेक्ट किया, सो यू नो वॉट यू आर इन फॉर। ठीक है, He is a phenomenal director, मुझे ऐसा लगता है। और स्टारकास्ट की बात करें तो विजय वर्मा तो है ही, he is a protagonist and he is doing a fantastic job। मतलब आप बस ट्रेलर ही देख लो, उतना काफी है to get hooked to this पर्टिकुलर सीरीज। उसके अलावा जो स्टारकास्ट दूसरा इसमें जो साथ दे रहे हैं उनके, कृतिका कामरा है, एंड देर इज अ लॉर्ड ऑफ मराठी एक्टर्स हियर, जैसे साई तम्हणकर है, देन आई ऑल्सो हैव ऑन माई लिस्ट यस गिरीश कुलकर्णी, देन ऑल्सो जैमी लीवर, जॉनी लीवर की बेटी। सो ब्यूटिफुल स्टारकास्ट, आई फील एवरी वन इज डूइंग एब्सोल्यूट जस्टिस टू देयर रोल, एंड द एंटायर स्टोरी लाइन, द डायरेक्शन, द सिनेमाटोग्राफी इज क्वाइट ग्रिपिंग। सो समथिंग आफरीन रिकमेंड्स यू दिस वीकेंड इज मटका किंग ऑन Amazon Prime। मैं हूँ माइक से दिल तक आफरीन, आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

दोस्तों तो आज थोड़ी हेल्थ शेल्थ की बात की जाए। जनरली जब सर्दी खांसी हमें होती है तो हम क्या कहते हैं, नॉर्मल है, वायरल है एंड काफी इजी ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी वही नॉर्मल चीज डेंजरस टर्न ले लेती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आफ्टरीन का साथ है आपके साथ और आज बात हो रही है RSV की, यानी रेस्पिरेटरी सिंकिटल वायरस। नाम थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इशू काफी रियल है। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने हाई रिस्क ग्रुप्स को स्पेशली RSV वैक्सीन लेने की एडवाइस दी है। देखिए, RSV कोई नया वायरस नहीं है, बहुत पुराना है। ऑलमोस्ट हर बच्चा ना 2 साल की एज तक एक बार RSV कैच कर ही लेता है। बट द प्लॉट ट्विस्ट इज इन्फेंट्स, एल्डरली लोग, प्रेग्नेंट वुमेन और वीक इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये वायरस सिंपल कोल्ड से डायरेक्टली निमोनिया या ब्रोंकाइटिस तक का पहुंचा सकता है। ठीक है, दैट्स अलार्मिंग, बट उसके लिए क्या है, उसके लिए वैक्सीन है यहाँ पर। तो MOPH ने अकॉर्डिंगली वैक्सीन स्पेशली रिकमेंड की है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, स्पेशली जो 28 से 36 वीक्स के बीच में है, 60 प्लस एडल्ट्स के लिए, क्रॉनिक इलनेस वालों के लिए, वीक इम्यूनिटी वालों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ना ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीबॉडीज बेबी तक भी पहुंच जाती है, ठीक है, इवन बिफोर बर्थ। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर ये जो वैक्सीन है HMC, PHCC सेंटर्स हर जगह मिल रहे हैं। सो इट्स बेटर ना, बेटर सेफ देन सॉरी, राइट? मैं हूँ आफरीन आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से आई एम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
2: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुरशरण सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
1: शाहरुख खान इतना चार्म कहां से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
3: Only on Mirchi, it's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरी आवाज बैठ गई है, मैं क्या करूं?
1: अरे तो आवाज को अपना कंफर्म टिकट दिखाओ, उसको बोलो खड़ी हो जाए।
2: साले को खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़।

अच्छा मैंने सच्ची सच्ची बताओ, सुबह उठते ही पहली चीज आप जो करते हो वो है फोन चेक करना, है ना? और मैं जानती हूँ आप ये कर रहे हो क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और भाई आज की दुनिया में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्लोबल इनिशिएटिव चल रहा है जिसे कहते हैं स्क्रीन फ्री वीक। यस यू हर्ड इट राइट, 4th of May से लेकर 10th of May तक ये ऑब्जर्व हो रहा है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, स्क्रीन्स को थोड़ा सा पॉज कर दो और लाइफ को थोड़ा सा प्ले मोड पे डाल दो यार। देखो टीवी, मोबाइल, गेमिंग, सोशल मीडिया, इन सब से एक कॉन्शियस ब्रेक लेना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट ये है जो शायद सबको नहीं पता, दिस इज नॉट एन एंटी टेक्नोलॉजी मोमेंट, ठीक है? ये इंटेंशनल यूजेज का कॉन्सेप्ट है। मतलब काम के लिए स्क्रीन यूज करो, ऑफकोर्स काम है, ऑफिस का काम है, जो भी है उसके लिए यूज करना बनता है, लेकिन बिना वजह स्क्रोलिंग को थोड़ा कंट्रोल करो, यही कहता है ये इनिशिएटिव। और रिसर्च ये कहता है कि जब हम स्क्रीन से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं ना, तो हमारी ब्रेन की क्रिएटिविटी जो सर्किट्स है वो एक्टिवेट हो जाती है, स्लीप इंप्रूव होती है, एंजाइटी रिड्यूस हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, रियल कॉन्वर्सेशंस वापस आती है। देखिए मेरा टेक क्या है ना, प्रॉब्लम स्क्रीन में नहीं है, प्रॉब्लम ना हम में है, राइट? जो हम ऑटो पायलट मोड में जब चले जाते हैं, थोड़ी सी देर के लिए फोन उठाया काम किस और चीज के लिए, और फिर उसके बाद में जो रील पे रील, एक रील और बस एक रील और करते करते आपके आधे घंटे कहाँ गुजर जाते हैं। बाद में जो गिल्ट होता है, हाय द गिल्ट इज सो रियल एंड आई कैन रिलेट टू इट। सो वेल, इस वीक का ये चैलेंज है, इसे अपना लो, स्क्रीन फ्री वीक इट इज। और फिर क्या करना है भाई, अगर ऐसे लगा भी आपको कि कहीं थोड़ा सा देख ले तो भाई ऐसा नहीं करो, थोड़ा सा वॉक पे चलो, इधर उधर टहल लो, और खाना खाते वक्त फोन को साइड में कर लो ना, और थोड़ा सा घर वालों से बात भी कर लो भाई, क्योंकि स्क्रीन्स हमें कनेक्ट करती है दुनिया से, पर डिसकनेक्ट भी वहीं से होता है जब हम अपने आस पास के लोगों को इग्नोर कर देते हैं। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vierba la burga. Milci, burga.
1: हेलो,
2: उसको पैरों को पीछे लगा के उसको को आगे करो।
3: हेलो,
1: हाँ जी,
3: ये भाई साहब, ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
1: कौन सी गाड़ी आपकी?
3: पैरों है, स्टीम है, एक सेकंड आप होल्ड करें।
2: अरे आ गई क्या? तो रात उठाइए वहाँ से, वो अब तक नहीं पहुँची। उसका फोन आया मेरे पास, रात उठाइए गाजियाबाद से उसने, दोनों आ गए।
3: हेलो रोहित जी, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का?
1: बताइए कैसे बताऊँ मैं हिसाब किताब, बताओ कौन सी गाड़ी आपकी?
3: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं चेक नहीं दे पाऊंगा, मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
1: ठीक है,
3: ठीक है। इसमें मेरी अभी तो आप तो लिखी
1: है, मॉडल
3: मॉडल आप लिख लो इसका। एक सेकंड,
2: आराम प्रकार से गाजियाबाद से पत्थर उठाइए, क्या मॉडल है उसका?
1: 2000।
3: यार रोहित, एक तो ये है कि ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह, और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं, 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो, किस तरह गाड़ी इंश्योर कर दो, ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं, बस बेच के फिर मेरा स्यापा खत्म, मैं नहीं जानता कहाँ की गाड़ी थी कुछ था।
1: हेलो,
3: हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे भाई साहब?
1: अजय शर्मा।
3: अजय जी, ऐसा है मेरे पास 28 गाड़ियां हैं इस वक्त।
1: अच्छा, आपकी अपनी है?
3: अब उसको आपको क्या लेना है यार, मेरी अपनी
1: उसी,
3: मैं आपको अच्छा बताता हूँ, 3 गाड़ियां गाजियाबाद से उठाई हैं, 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं, बाकी सारी दिल्ली की हैं।
1: चोरी की है क्या?
3: हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
1: सारे मुझे देखना पड़ेगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
3: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो, आप मैं
1: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
3: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा?
1: बात करूंगा ना आपसे।
3: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
1: अरे सर, ऐसा काम नहीं है मेरा ना।
3: आप नंबर लिख लेना, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो, एक सेकंड रुकिए।
2: हाँ, अरे तो ना बिक रही तो गाड़ी को काट देना, उसके पार्ट्स बेच दे।
3: हाँ जी भाई,
1: हाँ।
3: तो आप ये कर दोगे ना पूरे?
1: शाम को पता
3: नहीं, आप वैसे कर दोगे ना पूरे?
1: क्या कर रहा हूँ, शाम को फोन करके बताऊंगा।
3: अजय जी, ऐसा है, ये जितनी गाड़ियां है ना, ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा।
1: तो मैं आपको देखना चाह रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अब से कोल्ड ड्रिंक लेने से पहले आपके जहन में एक सवाल जरूर आएगा। ये नहीं कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होगा, ये कि भाई इस पर टैक्स कितना होगा। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची। और आज की खबर कुछ ऐसी है,
1: क्या खबर कतर?
0: कतर के जनरल टैक्स अथॉरिटी ने एक बड़ा ही स्मार्ट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट इज के अब एक्साइज टैक्स डायरेक्टली शुगर कंटेंट पर होगा। और ये बात तो आ गई थी कि अब शुगरी ड्रिंक्स पर टैक्स लगेगा, लेकिन उसका ब्रेकडाउन कैसा है ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे हाई शुगर अगर कोई ड्रिंक है 8 ग्राम या उससे ज्यादा पर 100 ml पर, तो उस पर लगेगा 1.06 कतरी रियाल पर लीटर टैक्स। अगर मीडियम कंटेंट है शुगर का उसमें, तो 5 से लेकर 8 ग्राम तक तो 0.77 कतरी रियाल पर लीटर, और उससे कम है यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, 5 ग्राम से कम शुगर है, तो फिर जीरो टैक्स। मतलब अब लेबल पढ़ना सिर्फ जिम वाले लोगों की काम नहीं है, स्मार्ट कंज्यूमर्स का भी हो गया है। अब यहाँ एक छोटी सी बट पावरफुल बात यह है कि कैलकुलेशन जो ये देख रहे हैं आप, ये पर 100 ml पर किया गया है। मतलब आप तो 330 ml का लोगे, 500 ml का लोगे, तो उसमें हर 100 ml के हिसाब से और शुगर कंटेंट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। वैसे ये सिर्फ कतर का आइडिया नहीं है, यूके ने भी ऐसा शुगर बेस्ड टैक्स लगाया था, उसके बाद यूएई, सऊदी, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर ऐसा चलते आया है। तो बस अगली बार ये देखिए, ये पैसा कमाने का सिस्टम नहीं है, ये याद रखिएगा कि ये एक बिहेवियरल नज है कि आपको सटली पुश किया जा रहा है कि भाई चूज हेल्दी ऑप्शंस ना। तो बस अगली बार जब आप शॉपिंग करोगे ना, तो शुगर कंटेंट जरूर देख लेना के और सोच लेना कि भाई देखिए इस पर ज्यादा टैक्स लग रहा है, तो सोच समझ के अब शुगरी ड्रिंक्स पीजिए। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर माइक से दिल तक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है।
6: इरशाद इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स सिंपल सीधा नो टेंशन चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स TNC अप्लाई
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है
3: कैसे रुक सकता है
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए, एक क्लिक और एक बच्चे की जिंदगी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। टेक्नोलॉजी कभी कभी सिर्फ स्मार्ट नहीं, लाइफ ऑल्टरेटिंग भी होती है ना? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की खबर कुछ ऐसी है।
2: क्या खबर कतर?
1: दैट कतर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन अब एक गेम चेंजिंग इनिशिएटिव लेकर आया है। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विस लॉन्च हो चुकी है थ्रू द मारिफ पोर्टल। मारिफ इज MARIF। यस, फॉर्म्स के लिए लाइन में खड़े रहना, पेपर वर्क का जंगल, ये सब ऑलमोस्ट खत्म। अब आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो और SMS अपडेट्स भी मिलेंगे। मतलब प्रोसेस अब हो गया है फास्टर, स्मूदर, ट्रांसपेरेंट, एकदम स्ट्रीमलाइन सिस्टम। वैसे मैं बता दूं कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए। स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म, फिजिकल इंटेलेक्चुअल हियरिंग या विजुअल डिसेबिलिटीज, इवन डेवलपमेंट डिलेज अगर है, ब्रेन इंजरीज के केसेस भी कवर किए गए हैं, तो बस इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस। और क्या चाहिए है ना? बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, कारामा बिल, हेल्थ असेसमेंट और रीसेंट मेडिकल रिपोर्ट। देखिए, इवैल्यूएशन होगा और फिर इंडिविजुअल नीड्स के बेसिस पर प्लेसमेंट डिसाइड होगा। मतलब वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, कस्टमाइज्ड केयर अप्रोच है। बल्कि ये सिर्फ एक डिजिटल अपडेट नहीं है, ये एक्चुअली एक माइंडसेट शिफ्ट है। आई वुड से ये पूरा इनिशिएटिव उन पेरेंट्स के लिए है जिनके दिल में एक अनसर्टेनिटी होती है कि मेरे बच्चे का क्या इन्हें वो तालीम मिल सकती है। तो बस अब थोड़ा सा रिलीफ आप महसूस कर सकते हो। ये एक तरह से एक ब्रिज है स्ट्रगल से सपोर्ट तक। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अमिताभ बच्चन जी, क्या आपके ग्रैंड किड्स आपके पास में आके कहते हैं कि हमें ये वाली गेम खिलाओ या ये वाली गेम सिखाओ?
3: मैं कहता हूँ उनसे कि बल्कि हमको सिखाओ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है वो जो खेलते हैं, और जिस गति से वो लोग खेलते हैं हम लोग उसको कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार उनके साथ, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो तो आजकल फुटबॉल का गेम भी चल पड़ा है, उस पे खेलते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं।
2: क्या आपके ग्रैंड किड्स को अमिताभ बच्चन जी कोई आइडिया है कि वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अजूबा से, शहंशाह से, सरकार से, इन शॉर्ट हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: खट खट।
1: कौन है?
0: इशांत।
1: इशांत कौन?
0: इशांत गदाधारी भीम इशांत।
2: खट खट हू दैट?
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, और हमारे कतर से एक प्राउड वाली खबर आ रही है दोस्तों।
1: क्या खबर कतर?
0: खबर ऐसी है दैट कतर एयरवेज को वर्ल्ड का मोस्ट एमिशन एफिशिएंट लार्ज कैरियर माना गया है 2025 के एमरल्ड स्काई रिव्यू में। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जितना लंबा सफर उतनी कम पॉल्यूशन पर पैसेंजर, क्लीन फ्लाइंग क्वाइट लिटरली। वेल, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है दैट एविएशन वर्ल्ड में एक मेट्रिक होता है ASK, अवेलेबल सीट किलोमीटर्स। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है पर इसका फंडा काफी सिंपल है, कितनी सीट्स कितनी दूर तक फ्लाई कर रही है और उसके हिसाब से एफिशिएंसी मेजर होती है। और इस रेस में कतर एयरवेज ने रयान एयर और टर्किश एयरलाइन जैसे बड़े नाम को भी पीछे छोड़ दिया है। वेल, ऑन दैट नोट, अक्सर लोग सोचते हैं ना कि लॉन्ग फ्लाइट्स ज्यादा पॉल्यूशन करती होंगी, बट रियलिटी नॉट ऑलवेज। कतर एयरवेज जैसे एयरलाइंस अपनी फ्लीट को सुपर मॉडर्न रखती है, एयरबस A350, बोइंग 787 जो फ्यूल को लिटरली सिप करते हैं, गल्प नहीं। रिजल्ट अराउंड 60 ग्राम्स कार्बन एमिशन पर पैसेंजर किलोमीटर, व्हिच इज एक्चुअली अमंग द लोएस्ट ग्लोबली। डू यू अंडरस्टैंड, इट्स ग्लोबली द लोएस्ट। दैट्स व्हाट आई कॉल स्मार्ट सस्टेनेबिलिटी एंड नॉट जस्ट बिग क्लेम्स। और सिर्फ प्लेन्स ही नहीं, रूट ऑप्टिमाइजेशन, वेट रिडक्शन, 80+ फ्यूल सेविंग इनिशिएटिव्स, मतलब ये एक फुल ऑन प्रिसिशन गेम है बिहाइंड द सीन। सो नेक्स्ट टाइम जब आप विंडो सीट से क्लाउड्स देख रहे होंगे ना फ्लाइट में, सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहे हो, यू आर पार्ट ऑफ अ स्मार्टर ग्रीनर जर्नी। माइक से दिल तक आफरीन के साथ आप जुड़े हैं राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

देखो, हम जब भी फ्लाइट पकड़ते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं? पासपोर्ट या टिकट चेक करते हैं। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए। क्या आपने कभी अपनी फ्लाइट का कार्बन फुटप्रिंट चेक किया है?

0: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: ये पानी पूरी वाला हर बार सूखी पूरी का एक्स्ट्रा चार्ज करता है, क्या करूं?
0: अरे कोचू, पानी पूरी गीली होती है, तू सूखी मांगेगा तो वो सुखाने का एक्स्ट्रा पैसा लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: एक डेजर्ट का शिकारी, एक साइलेंट ऑब्जर्वर और अब एक ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टार, कौन है ये? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और आज ये खबर सिर्फ स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई नहीं है, एक इमोशन, एक आइडेंटिटी और एक रीजनल प्राइड भी छुपा हुआ है इसमें.
1: क्या खबर कदर?
0: देखिए खबर कुछ ऐसी है दैट ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है जीसीसी गेम्स दोहा का मैस्कॉट जिसका नाम है वर्शक. इट इज इंस्पायर्ड बाय द डेजर्ट लिंक्स. अब आप सोच रहे हो ये लिंक्स क्या है, ये क्यों है? सो बता दो, वर्शक कोई रैंडम क्यूट कैरेक्टर नहीं है. ये रिप्रेजेंट करता है प्रिसिशन, एजिलिटी और साइलेंट स्ट्रेंथ. डेजर्ट लिंक्स एक ऐसा प्रेडेटर है जो बिना नॉइज किए फुल फोकस के साथ अपना टारगेट अचीव करता है. एंड ऑनेस्टली इजंट दैट व्हाट चैंपियंस आर मेड ऑफ? नो नॉइज बट कंसिस्टेंसी, नो हाइप बट हसल. और सुनो, ये सिर्फ मैस्कॉट लॉन्च नहीं है, दिस इज अ फुल स्केल स्पोर्टिंग स्पेक्टाकल लोडिंग. वेल डेट्स कुछ इस तरह से 11 से लेकर 22nd मे. वेन्यू इज दोहा, ऑफ कोर्स आर रेडी एंड रोरिंग. 1000 से ज्यादा एथलीट्स है, 19 स्पोर्ट्स है और कतर की तरफ से 300 से ज्यादा प्लेयर्स ऑलरेडी गियर्ड अप है. वेल ओपनिंग सेरेमनी जो है ये होने वाला है अल शखब इंडोर एरिया में. एंड ट्रस्ट मी, कतर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है ना आपने, दे डोंट do just events, they create experiences. So well, we are all set yahan par with this Vashak, the cute mascot. Main hoon Afreen aapke saath, mic se dil tak, right here on Mirchi, it's hot.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burka, burka. La virtua la burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Sir, very good evening. Me बैंक से बोल रही हूँ, हमारी एक स्कीम आई है, क्या आप लेना चाहेंगे?
1: लेकिन मुझे नहीं चाहिए।
2: ओके सर, बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का
3: हमेशा यही होता है, मैं ही फोन करता रहता हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ, अब ये भाई साहब करेंगे मुझे फोन।
4: अ वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
1: बात बताओ, इस नंबर से मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लेडी बोल रही थी।
4: यस सर।
1: जरा उनसे बात कराइए मेरी।
4: सर यहाँ पे तो अभी कॉल पे सारी लड़कियाँ हैं, मुझे मालूम नहीं है किससे आपकी बात हुई है। मैं आपकी
1: बात बताओ, आप लोग किसी को ऑफर देते हो तो आप साथ में गाली देते हो?
4: सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे गाली तो किसी ने इनको यहाँ देता नहीं, ऐसा होता नहीं।
1: मेरे पास फोन आया है यहाँ से स्कीम के बारे में,
4: राइट सर?
1: जब मैंने उसको मना किया है तो उसने मेरे को गाली दी पलट कर।
4: सर आया,
1: तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर?
4: आई एम सो सॉरी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से
1: मैं
4: बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों कहा गया है हमारे कस्टमर को। बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का आजा फोन।
2: सर वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
1: पास है ना नंबर, इसी नंबर से फोन आया था।
2: यस सर।
1: गालियाँ दे जा रहा है यार वो।
2: सर कौन?
1: अरे यार मेरे को नाम नहीं पता उसका, मेरे को गालियाँ सुनाई जा रहा है।
2: सर मैं उनसे क्षमा, ऐसा सर होता नहीं है हमारे बैंक में कभी भी।
1: क्या
2: मैं
1: नहीं होता यार?
2: नहीं सर, इस तरह की बात कभी नहीं हुई सर, आपके कहने से हम तो ये
1: फोन आ रहे हैं बराबर और मेरे को गालियां दे रहे हैं।
2: सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है सर, यही तो हमारी सर्विस है।
1: झूठ बोलेंगे तुम लोग,
2: ऐसी गलतियां आइंदा नहीं होगी। सर बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मुर्गा कहीं का।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये छोटा सा कॉल सेंटर मेरा ही है, ये सारी हरकतें मेरी हैं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है अब।
1: यार तुम लोग ना
4: सर बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे साथ सर हंस के बोल दीजिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100813।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
0: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए, अगर आप इस साल हज पर जा रही है, आपका कोई जानने वाला जा रहा है, तो ये खबर आपके लिए। क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक छोटे से कार्ड के बारे में, लेकिन ये हज के सफर में बहुत ही बड़ा सहारा बन सकता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और सऊदी अवकाफ मिनिस्ट्री ने क्लियर कह दिया है कि नुसु कार्ड अब हज के दौरान हर वक्त आपको कैरी करना मैंडेटरी है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि एक कार्ड ही तो है ये, बट लेट मी टेल यू, इट्स नॉट जस्ट एन आईडी, ये एक स्मार्ट कंपेनियन है। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, एकोमोडेशन एड्रेस सब लिंक्ड होता है। अगर भीड़ में कोई पिलग्रिम आपके अपने ग्रुप से भटक जाए, कहीं घूम जाए, तो अथॉरिटीज इजीली उन्हें लोकेट करके वापस उनके ग्रुप तक पहुंचा सकती है। और ये सिर्फ सेफ्टी ही नहीं, ये कार्ड आपके मूवमेंट्स को भी स्ट्रीमलाइन करता है, चाहे बस बोर्डिंग हो या होली साइट्स के बीच ट्रैवल हो। मतलब एक तरह का सीमलेस पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस। तो देखिए, यहाँ पर लाखों लोगों का एक साथ चलना होता है, ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन और सेफ्टी सबसे बड़ा चैलेंज होता है इनका। नुसुक कार्ड बेसिकली एक डिजिटल बैकबोन है जो इस पूरे सिस्टम को स्मूथली चलाता है, ताकि आप इबादत पर फोकस कर सके और लॉजिस्टिक्स पर नहीं। और अब तक के आई एम श्योर हर दिन करीब आ रहा है, और मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि इस साल माय फ्रेंड्स मैं भी हज पर जा रही हूँ। एंड सच कहूँ, बहुत सी अजीब सी फीलिंग है मेरे दिल में, इतनी एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी सी नर्वसनेस भी है। और बस मैं कहना चाहूँगी आप सभी से कि अगर कभी जाने अनजाने में मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो, तो आज इस माइक के थ्रू मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ कि अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि मेरा भी ये सफ़र बिल्कुल आसान हो। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, it's hot.

0: दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी इंसानियत का हाथ पकड़ लेती है ना, तो उम्मीद का लेवल और भी अपग्रेड हो जाता है। और आज हमारे कतर में एक ऐसी खबर है जो सिर्फ मेडिकल अपडेट नहीं है, कई फैमिलीज के लिए रिलीफ का सिग्नल भी है। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और HMC यानी हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च की है कंट्री की पहली एडवांस्ड एमिलॉयड ब्रेन पेट सिटी इमेजिंग सर्विस। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो ये एक हाई प्रिसिशन ब्रेन स्कैन है जो अल्जाइमर्स डिजीज का अर्ली साइन ऑफ डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। मतलब सवाल ये है, इसमें खास क्या है? देखिए, नॉर्मली मेमोरी लॉस या कंफ्यूजन को लोग एजिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हर भूलना नॉर्मल नहीं होता है। ये न्यू स्कैन ब्रेन में जो बेटा एमिलॉइड डिपॉजिट्स है, ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है जो अल्जाइमर के मेजर मार्कर्स होते हैं। मतलब डॉक्टर्स को अब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि पेशेंट्स को अल्जाइमर्स है या कोई और डिमेंशिया टाइप की बीमारी है या कुछ और है। ओके, और डायग्नोसिस जितना जल्दी होता है, ट्रीटमेंट उतना ज्यादा स्ट्रैटेजिक, राइट? वेल, वर्ल्ड ओवर डिमेंशिया केसेस जो है रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अर्ली डायग्नोसिस से पेशेंट का लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, मेडिसिन और फैमिली प्लानिंग बेटर हो सकती है। यानी सिर्फ पेशेंट नहीं, पूरी फैमिली को एक रोड मैप मिलता है। वेल, ये जो सर्विस है ये रुमाइला हॉस्पिटल के जेरियाट्रिक मेमोरी क्लिनिक के कोलैबोरेशन से लॉन्च हुई है, जो दिखाता है कि कतर का हेल्थ केयर सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, फोरसाइट पर भी काम कर रहा है। और सच कहूं तो मॉडर्न हेल्थ केयर का असली स्वैग यही तो है, जब मशीन सिर्फ स्कैन ना करे, जिंदगी को थोड़ा और आसान बना दे, राइट? माइक से दिल तक आफरीन के साथ आप जुड़े हो राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय देवगन, फर्ज करते हैं माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं. देयर आर थ्री पीपल विद यू. देयर इज केआरके, देयर इज करण जौहर एंड देयर इज काजोल. दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे.
3: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
2: Because that's the game. हमको दोनों को तो बचाने ही पड़े.
3: मुझे बचाने ही नहीं है. आई ब्रेक द रूल. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ.
2: ऐसा ही हूँ मैं.
3: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं.
2: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा.
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: खट खट.
5: Who there?
4: बनता.
5: बनता हूँ.
4: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को.
5: खट खट. Who there?
3: एक दो रूल. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ.
2: ऐसा ही हूँ मैं.
3: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं.
2: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा.
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: खट खट.
5: Who there?
4: बनता.
5: बनता हूँ.
4: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप.

0: Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center.
1: वेल, कभी नोटिस किया है, इंसान को जो चीज मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है, और जो नहीं मिलता वही दिल के किसी कोने में खास बनकर रह जाता है। आज दो लाइंस जो मैं कहना चाहूंगी ना, वो कहीं ना कहीं इस बात को बहुत रिलेट करती है, और ये आफरीन की डायरी से शायरी नहीं, दो लाइंस ही कही है।
0: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी।
1: वो कुछ इस तरह से है कि अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती है। और फिर यही बात को ना गुलजार साहब ने भी ना बहुत खूबसूरती से कहा था कि जो मिल जाता है वो आम हो जाता है, जो मिल जाता है वो आम हो जाता है, खास वही है जो काश में है। शायद इसीलिए हर दुआ कबूल नहीं होती, कुछ काश भी जिंदगी में जरूरी होते। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा।

0: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: सर, सर मुझे बात करनी है आपसे। ऑफिस में काम मैं करता हूँ और क्रेडिट मेरा टीम लीडर ले जाता है, मैं क्या करूँ?
0: तो आपका प्रॉब्लम है कि क्रेडिट आपका टीम लीडर ले जाता है। एक काम करो, बैंक जाओ, क्रेडिट उधर भी मिलता है।

क्या हाल चाल कतर वालों? मिर्ची ईशा, जी हाँ मिर्ची ईशा आ चुकी है। आफ्टर सो लॉन्ग आई नो आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, लेकिन यस देर आई दुरुस्त आई ना, तो भाई मैं दुरुस्त अच्छे से आई हूँ आपको बताने। इस हफ्ते के शोज इवेंट सब कुछ बताऊंगी, उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज कतर में हो रही है एंड ऑल्सो अबाउट द कतर योर ब्यूटिफुल सिटी, उसके बारे में आपको बताऊंगी। और कतर से रिलेटेड वो हर बात जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है वो सब बताऊंगी ऑन माय शो। बस उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। अब सिलसिला जारी रखते हैं हमारे नए सीजन का, यानी कि मिर्ची वीकेंड वाइब्स का। आपको बताऊंगी सब कुछ कतर में जो भी हो रहा है, होने वाला है सब कुछ ऑन माय शो। तो मेरे साथ बने रहिए, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vieta la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हेलो रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोलिए
2: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रोफाइल देखा था, क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद आ गया है, चाह रहे थे थोड़ा सा आपके बारे में पूछना। आप मेरे को अपनी थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, एज बता देंगे कितनी एज है आपकी?
1: प्रोफाइल में लिखी हुई है, आपने देखी नहीं? 25 साल है।
2: अच्छा वही मैं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। रेखा बता देंगे आप ये कितनी पढ़ी लिखी है, थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना?
1: मैंने बीए किया है।
2: अच्छा रेखा, आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि लड़के ने आपको पसंद कर लिया है और मैं चाहता रहा था आपके पापा से बात करना, बल्कि लड़के के पापा भी आपको चाह रहे थे आपसे मिलना। प्लीज माइंड मत करना, आपके कोई टांग में तो चोट नहीं लगी? प्लीज इसको नहीं, मैं ऐसी पूछा था। अच्छा मेरे को रेखा एक चीज बता दीजिए, आप हील वील तो ज्यादा नहीं पहनती ना?
1: लेकिन क्यों हील? नहीं तो आपको पूछना क्या है, बताइए।
2: मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हील पहनती है क्या आप? नहीं पहनती? मैं
1: हील तो कभी पहनते भी हैं, कभी नहीं भी पहनते, लेकिन
2: ज्यादातर आप नहीं पहनते हैं?
1: ज्यादातर
2: ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये भाग के शादी करना चाहता है, तो मैं यही देख रहा था कि आपके कोई टांग में चोट तो नहीं है, कहीं हील वील तो नहीं पहनती, कहीं भागने में परेशानी हो जाए। तो इस लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे।
1: क्या बात कर रहे हैं आप?
2: नहीं मैं ये कह रहा हूँ, इस लड़के के माँ बाप आएंगे, ये थोड़ा सा दौड़ा के देखेंगे। अगर आप भाग के शादी कर सकती हैं तो ही वो करेंगे ना, लड़के की बड़ी ख्वाहिश है। बल्कि इसके माँ बाप ये कहते हैं, हमारे चार लड़के थे, सबने ऐसी कर लिया, हम चौथी शादी लड़के की करते हैं, हम वो लड़के भगा के करना चाहते हैं।
1: कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए
2: दोबारा। एक कमाल है, अभी से भाग गई यार।
1: हेलो
2: देखा, आपने फोन काट दिया यार, आप हील नहीं पहनती, आपके टांग में चोट नहीं लगी, भागने में प्रॉब्लम क्या?
1: नहीं
2: दोबारा फोन मैं आप ही को तो करूंगा, लड़के ने आपको पसंद कर लिया, लड़के
1: नहीं बकवास।
2: अच्छा फोन मत काटिएगा, फोन मत करिए, मेरी बात सुनिए। रेखा
3: रेखा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं आपकी शादी नहीं करा रहा, आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप मुर्गा बन गई हैं, और प्लीज गुस्सा नहीं और फोन मत काटना यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
1: मेरी शादी के बाद मेरे डैडी से ही करिएगा।
3: नहीं मैं उनसे जरूर कर लूंगा, लेकिन डैडी से नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप प्लीज बोल दीजिए।
1: नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी।
3: मेरी बात सुनिए, आप अगर कुकड़ू को बोल देंगे मैं आपकी शादी करा दूंगा, जल्दी से करा दीजिए, मेरा मतलब जल्दी से बोल दीजिए।
1: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

इतनी शिद्दत से आप एक बॉल के पीछे भागते हैं, भागते भागते भागते उसको फिर किक करते हैं, अपने से और दूर भगा देते हैं। वाह क्या ही गेम है यार, मैं बात करूँ फुटबॉल की यार। एक ऐसा गेम जो कतर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लोग बहुत ही एक्साइटेड होके इसके सारे मैचेस देखते हैं, लाइव देखना चाहते हैं या ऑफलाइन भी देखते रहते हैं। तो क्रेज जो है दैट इज नेक्स्ट लेवल हमारे कतर में। तो अमीर कप फिनाले हो रहा है आपके कतर में, दैट इज फॉर 2026 एंड ये हो रहा है खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम दोहा में। एंड इसके टाइमिंग्स 5:30 से लेके 7 PM तक है, तो भाई जल्दी से जाके ना अपने टिकट्स बुक करवाएं। और टिकट्स अगर आपको बुक करवानी है तो आपको जाना होगा www.qfa.qa पे और जाके फैमिली फ्रेंड्स सबकी बुकिंग करवाइए, इंजॉय करिए वीकेंड भाई, चिल मारिए। फुटबॉल मैचेस को मैंने भी लाइव देखा है, मैं गई थी देखने, दैट वॉज इंडिया वर्सेज उज्बेकिस्तान। हारा था इंडिया लेकिन द फीलिंग यू नो द बैटल ग्राउंड वॉज सुपर टूपर एनर्जेटिक। और जब आप उसकी एनर्जी को फील करते हो तब आपको मज़ा आता है, क्योंकि जो वो जो धरती होती है ना, समय दड़ दड़ दड़ दड़ कर रही होती है विद द ऑल शाउट आउट फॉर यू नो द फुटबॉल लवर्स एंड एवरीथिंग। यार क्या मज़ेदार होता है, जल्दी जाके ना एक बार तो ज़रूर जाइए और इन्जॉय करिए। और बाकी सारे इवेंट्स के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची शाह को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

बचपन में आपने मौत का कुआं देखा है? अगर आपने मौत का कुआं नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। वेलकम बैक, मैं हूं मिर्ची ईशा और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक ऐसे डेयरिंग सर्कस की जो शायद आप उससे रूबरू नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर्कस को देखें, एंजॉय करें और कुछ नया सीखें, तो आपके लिए आ चुका है फोंटाना। जी हाँ, फोंटाना बाय सर्क्यू ड्यू लिबान आ चुका है। ये सर्कस टेंट में हो रहा है हयात प्लाजा में। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं जल्दी से जाइए, क्योंकि 31 मई तक है ये एंड ये वेडनेसडे से सैटरडे तक होते हैं। मैं आपको टाइमिंग से रूबरू करवा देती हूँ, क्योंकि टाइमिंग्स एक्ट पता होने जरूरी है कि कहीं आपका शो निकल ना जाए। तो इसलिए टाइमिंग इसके है, वेडनेसडे को आपको 7 PM to 9 PM मिलेगा एंड इट्स थर्सडे टू सैटरडे। थर्सडे से लेके सैटरडे तक 4 PM से लेके 6 PM तक मिलेगा एंड ऑल्सो 7 PM to 9 PM एज वेल। तो आप अगर जाना चाह रहे हैं इस हफ्ते, अपनी जो डेट है ना मार्क कर लीजिए, बच्चों को लेके जाइए, कुछ नया दिखाइए, कुछ सिखाइए, एंजॉय करिए एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फन लैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, it's hot.

0: ever seen. Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेस। और अगर इसको डिटेल में जाने तो इसका मतलब होता है कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश का कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट अगर आपने जानी नहीं तो आप उस देश से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और आज मैं आपको एक ऐसा ही इवेंट बताने वाली हूँ जो हो रहा है आपके दोहा कतर में, और आप इसको इंजॉय आप बड़े लोग भी कर सकते हैं। उसके अलावा छोटे बच्चे जो हैं, जो इस वक्त उस स्टेज पे होते हैं जब जो लर्निंग पावर होती है उनकी बहुत तेज़ होती है, वो बहुत ईजिली हर चीज़ को अडेप्ट कर लेंगे, तो इस समय बच्चों को भी ले जाना बहुत ज़रूरी है। जानिए अपनी कंट्री को अच्छे से, उनके ट्रेडिशंस को, आर्ट को, लेगेसी को। तो आपके लिए है फैमिली डे एक्सप्लोरिंग हज, जी हाँ, जहाँ पे आपको हर एक नॉलेज लॉजिक के साथ दी जाएगी और आप ये इंजॉय कर सकते हैं म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में। ये हो रहा है 9th of May, यानी कि आज का दिन ही है ये। 2:30 PM से 4:30 PM आपको पहुंचना है MIA एट्रियम, एंड यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और जान सकते हैं अपनी कंट्री को, अपने कदर को और ज्यादा और बखूबी। तो जाइए इस हफ्ते और इंजॉय करिए मेरे साथ, यानी मिर्ची ईशा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: With Mirchi, fresh maal.
6: Dreamy vibe or romantic feel ke saath suno, Chand Mera Dil.

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: खट खट अगर कर,
2: अगर कर हु?
1: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
2: खट खट हु दैट?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: सर बाइक चलाते चलाते मच्छर मुंह में चले जाते, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, जब तेरे को पता ही है मच्छर सामने से आ रहा है, तू रॉन्ग साइड क्यों चला रहा है?
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

जो कला होती है ना वो कोई उम्र नहीं भालती है। वो भालती है सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त और आपकी कंसंट्रेशन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसी ही एक वर्कशॉप की, ड्राइंग फॉर अडल्ट्स। यस, ये सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स के लिए ड्राइंग वर्कशॉप है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आपका जो हिडन टैलेंट है, या बोल सकते हो कि आपको जो करना बहुत पसंद था कुछ ज़माने में और आप अपनी उस हॉबी को छोड़ चुके हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अगेन। जी हाँ, ये वर्कशॉप होने जा रही है एजुकेशन सेंटर म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में। मई 10th से मई 13th तक है ये, एंड 4 PM टू 6 PM आपको टाइमिंग्स पर पहुँचना पड़ेगा। एंड एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो अगर आपके अंदर भी वो कीड़ा है ना कि भाई वो ड्राइंग करना है, बचपन में मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, आपकी पुरानी जो फाइल्स हैं, जो आपने स्टिल पेंटिंग्स करी हैं, लाइव पेंटिंग्स करी हैं, अपनी 11th 12th में फाइन आर्ट्स लिया था, कभी कुछ किया था, उन सबको ना वापस लेके आइए। अपने अंदर का जो क्रेज है ना, बच्चा है, जो आपने उस समय जिया था, उसको दोबारा जीने का मौका दे रहे हैं आपको। जी हाँ, इस वर्कशॉप पे जाइए और एंजॉय करिए नई नई टेक्निक्स और नए तरीके ड्राइंग करने के। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर अपडेट्स विद मी, दैट इज मिर्ची ईशा, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वैन। इट्स ऑल।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: हेलो,
2: उसको पैरों को पीछे लगा के उसको स्टिंग को आगे करो।
1: हेलो, हाँ जी,
2: ये भाई साहब, ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
1: कौन सी गाड़ी आपकी?
2: पैरों है, स्टिंग है, एक सेकंड आप होल्ड करें।
3: अरे आ गई क्या? तो रात उठाइए वहाँ से, वो अब तक नहीं पहुँची।
4: उसका
3: फोन आया मेरे पास, रात उठाइए गाजियाबाद से उसने, दोनों आ गए।
2: हेलो रोहित जी, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का?
4: बताइए कैसे बताऊँ मैं हिसाब किताब, बताओ कौन सी गाड़ी आपकी?
2: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं चेक नहीं दे पाऊंगा, मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
4: ठीक है,
2: इसमें मेरी अभी तो आप लिखिए एक मॉडल आप लिख लो इसका। एक सेकंड, आराम प्रकार से गाजियाबाद से उठाइए, क्या मॉडल है उसका?
4: 2000।
2: यार रोहित, एक तो ये है कि ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह, और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं, 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो, किसी तरह गाड़ी इंश्योर कर दो, ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं, बस बेच के फिर मेरा स्यापा खत्म, मैं नहीं जानता कहां की गाड़ी थी कुछ था।
1: हेलो,
2: हाँ जी, कौन बोल रहे भाई साहब?
1: अजय शर्मा।
2: अजय जी, ऐसा है मेरे पास 28 गाड़ियां हैं इस वक्त।
1: अच्छा, आपकी अपनी है?
2: अब उसको आपको क्या लेना है यार, मेरी अपनी
1: नहीं, उसी
2: मैं आपको अच्छा। बताता हूँ, 3 गाड़ियां गाजियाबाद से उठाई हैं, 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं, बाकी सारी दिल्ली की हैं।
1: चोरी की है क्या?
2: हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
1: पहले मुझे देखना पड़ेगा आप कैसी बातें कर रहे हैं।
2: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो, आप मैं
1: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
2: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा?
1: बात करूंगा ना आपसे।
2: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
1: अरे सर, ऐसा काम नहीं है मेरा ना।
2: आप नंबर लिख लेना, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो, एक सेकंड रुके।
3: हाँ, अरे तो ना बिक रही तो गाड़ी को काट देना, उसके पार्ट्स बेच दे।
2: हाँ जी भाई, तो आप ये कर दोगे ना पूरे?
1: शाम को बताता
2: हूं। नहीं, आप वैसे कर दोगे ना पूरे?
1: क्या कर रहा हूं, शाम को फोन करके बताऊंगा।
2: अजय जी, ऐसा है, ये जितनी गाड़ियां है ना, ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
0: 89.6 FM मिर्ची 1।
7: इट्स हॉट मिर्ची, फ्रेश माल।
8: ग्रूवी फील और कैची वाइब के साथ सुनो जब तलक

इस गाने को गाया है अरिजीत सिंह और अकासा ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। सुनते रहिए जब तलक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: देखिए, जो इंसान करे बीवी से प्यार, वो उसको कैसे करे शॉपिंग से इनकार। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि भाई शॉपिंग के बैग्स आप लोग सभी तैयार रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्जीबिशंस के झरने बहने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसी ही एक एग्जीबिशंस की, जिनाथा एग्जीबिशन, जो हो रही है आपके कतर में अल हजम में। एंड ये मई 6 से लेके मई 13 तक है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि कतर में ब्यूटी एक्सेसरीज जो भी देखना चाहते हैं वहाँ पे आपको मिलेगा। एंड आप देखेंगे कि इट्स सोफिस्टिकेटेड, इट्स अ वेरी क्लासी एग्जीबिशन वेर यू विल फाइंड द थिंग्स विच आर वेरी यूनिक एंड प्रोमिनेंट, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं इस वीकेंड कुछ अलग करने के लिए, तो अल हजम जाइए और जाके जिनाथा एग्जीबिशन को एक्सपीरियंस करिए। टोटली एंट्री फ्री है एंड एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। यस, डेफिनेटली जो हमारे कतर की जो एग्जीबिशन होती है, दे आर नेक्स्ट लेवल, दैट वी ऑल नो। बस उसी का बढ़िया सा एक्सपीरियंस करना है तो इस वीकेंड जरूर जाइए। एंड फॉर मोर अपडेट स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इज हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: Hey guys, this is Varun Dhawan. Wow, that goes wow.
3: Swag, style aur non-stop dancing ke liye taiyar ho jao.
2: Add it, turn it up, and don't sit now. Just go wow.
3: Wow. Say wow.

0: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची

इस समय बच्चे एक ही गाना गा रहे हैं, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। भाई इसी का इंतजार होता है बच्चों को, या तो जंपिंग जोन में भेज दो या कहीं प्लेइंग एरिया में, बस ये बच्चों को यही चीजें पसंद आती हैं। भाई बच्चों को आए क्यों ना, हमारे बचपन में ये सब चीजें कहाँ होती थी, हम लोग बस वो मिट्टी के ठेले बना के खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए है टॉय फेस्टिवल। जी हाँ, टॉय फेस्टिवल जो कतर में आ चुका है, सबसे बड़ा कतर का शो, एकमात्र ऐसा शो जहाँ पे भाई एक महीने तक ये आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि कतर में मिलेगा आपको ये एक महीने के लिए, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपको ये कतर में देखने को मिलेगा। मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, यानी कि DECCC में आपको ये मिलेगा। एंड उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लाइव शोज, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस, शॉपिंग, हर एज ग्रुप के लिए आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे मिडिल एज ग्रुप हो, सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। देखिए हम बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं और टॉय फेस्टिवल हमें कभी निराश नहीं करता, और बहुत सी ऐसी चीजें नई ऐड करता है जो हमने शायद कभी एक्सपीरियंस की ना हो और कभी देखी भी ना हो। और वो एक्सपीरियंस के साथ इस साल फिर शुरू होने वाला है टॉय फेस्टिवल। तो भाई बस थोड़ा सा सब्र और समर का टाइम आने दो, जुलाई का महीना आने दो, और एंजॉय करो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, it's hot.
5: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
7: कल का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਬਲ ਅਸਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ईशा ये क्या गाना गा रही है। भाई ये गाना ना एक लड़की के लिए डेडिकेटेड होता है, जब वो अपने घर को छोड़ के अपने ससुराल में जाती है तब ये गाना एक तरीके से डेडिकेटेड किया जाता है इस लड़की को, कि लड़की की जीवन जो होता है वो भी एक बंद पिंजरे की चिड़िया की तरह होती है, एंड वो अपनी फैमिली के साथ रहती है घर में, एंड देन शी फ्लाइज अवे एंड वो किसी और के घर जाके बस जाती है। भाई छोड़ने छड़ाने की बातें बड़ी इमोशनल कर देती हैं। ये एक फ्रेज बड़ा इमोशनल है जो एक लड़की की ज़िंदगी में होता है। दो जिंदगियां जीती है लड़की एक अलग अलग जगह में। देखिए बहुत इमोशनल पार्ट है। बस इसी के साथ मेरा भी टाइम उड़ने का हो चुका है। जी हाँ, आपसे अलविदा लेने का समय आ चुका है। आप लोगों से मिलूंगी अगले वीकेंड बहुत सारी बातों के साथ और बहुत सारे इवेंट्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल शोज के साथ। बस आपको क्या करना है, ट्यून इन रखना है 89.6 मिर्ची 1 को। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और ये
3: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: खटखट,
6: कौन है?
5: दवे।
6: दवे कौन?
5: द वे यू लव मी। आई हाय मर जावा।
6: खटखट, हु दैट?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Tiruchi helpline?
1: Hi there. What's up? Tell me.
0: मुझे मेरी जॉब के लिए रोज 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, थक जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ओ मैन, ये तो बहुत टायरिंग है। तू कैब चलाना छोड़ दे भाई एंड डू सम अदर जॉब।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: गाड़ी में पीछे बैठकर रिवीजन कराने वाला दोस्त क्या आपकी जिंदगी में कभी हुआ करता था?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने के लिए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड आज कोई तो बचपन की बात है जो एक बार फिर से मुझे याद आई गई. जब भी रिविजन या ऐसा कोई सब्जेक्ट मेरे आंखों के सामने आता है ना, सबसे पहले मुझे वो नज़ारा दिखाई देता है कि भैया कॉलेज में हमारी एग्जाम जो है बस शुरू होने वाली है. रास्ते में मैं जो हूँ बाइक चला रही हूँ, पीछे पे बैठी है मेरी दोस्त जिसके हाथ में वो नोटबुक है एंड जोर जोर से पढ़कर वो मुझे हर एक पॉइंट फिर से रिवाइज करा रही है. ये सिलसिला तब तक चलता था जब तक मैंने अपनी गाड़ी पार्क ना कर ली, हम क्लासरूम के बाहर तक पहुंच ना गए एंड टीचर ने फाइनली नोटबुक जो है ना हमारे हाथों से स्नैच ना कर ली. भाई क्या दिन थे. एंड पता है सबसे ज़्यादा खुशी कब होती थी? जब ये बात आपको पता चल जाए कि तूने गाड़ी में पीछे बैठ कर जो मुझे क्वेश्चन याद दिलाया था ना, वही क्वेश्चन एग्जाम में आया यार. तो अब से तो तू ही पीछे बैठेगी क्योंकि जो तू रिवाइज कराती ना वो पक्का पेपर में आता है. मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में ना वो एक टोटका सा बैठ जाता था. एंड 3-4 बार अगर ये हादसा रिपीट हो गया, मैं तो इसे हाथ से ही बोलूंगी, तो समझ जाए कि ये यारी जो है ना ये पक्की है. क्या दिन थे यार. चलिए जी, आपके गाड़ी में पीछे बैठ के ना सही, लेकिन आप चूंकि गाड़ी में बैठे हैं तो आपके साथ साथ इस वक्त हफ्ते भर की जो कुछ खास बातें हैं मैं आप तक फिर से पहुंचा दूं. करते हैं सिलसिला शुरू. टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स ऑल, दिस इज मीठी मिर्ची. बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
1: हेलो
2: हेलो मनोज जी।
1: हाँ जी
2: सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपने गाड़ी जीती ना सर्विस के लिए?
1: सर्विस के लिए जीती?
2: हाँ सर। सर नहीं सर, वो अभी तो ठीक नहीं हुई है सर। मेरी बात हो गई है, 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है ये।
1: 40,000 रुपए?
2: हाँ सर, वो मेरी कबाड़ी वाले से बात हुई है, 40,000 रुपए दे रहा है सर वो, और मना लिया उसे।
1: कोई तीसरी सर्विस है? किस चीज के कबाड़ी?
2: नहीं तीसरी सर्विस है, मेरे को मालूम है। आप ये आप देखे आए ना गाड़ी, ये सर्विस के लिए हमको दी थी ना आपने, तो उसकी बात हो गई है। 40,000 रुपए देने को तैयार है कबाड़ी वाला।
1: कबाड़ी वाला मतलब किस चीज की देने के लिए तैयार है? गाड़ी नई है, सर्विस तीसरी हो रही है।
2: नहीं सर,
1: वर्कशॉप में दी है। कबाड़ी वाला समझ नहीं आ रही मेरे।
2: मैं समझाता हूँ सर। आपकी जो गाड़ी थी ना
1: जी,
2: उसकी नॉर्मल सर्विस हो गई थी।
1: हाँ?
2: बढ़िया चकाचक हो गई थी सर। हमारा जो ये मैकेनिक है ना छोटू, ये टेस्ट ड्राइव पे ले गया था उसको। अच्छा, जब ये गया है ना, तो ये जो रेल की पटरी आगे पड़ती है ना हमारे वर्कशॉप से, रेलवे पटरी पे इसकी गाड़ी, इसने गाड़ी बंद कर दी सर पटरी पे।
1: अच्छा,
2: इस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं सर, वहाँ से ट्रेन आ रही थी सर, आपकी गाड़ी के परखचे उड़ा दिए उसने। अब मैं तो उसको चपेट मारी है, रो भी रहा है बैठ के। तो वो कबाड़ी वाले को दिखाया, जो सारा तो सामान बिखर गया है, जो बचा है उसके 40,000 दे रहा है।
1: पागल हो गया है तू क्या?
2: सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा
1: हूँ,
2: 40,000
1: रखा तू नहीं चाची, बकवास कर रहा है
2: सर। ट्रेन की पटरी में अटक गई, हम क्या कर सकते
1: हैं? ठेका ले रखा ट्रेन की पटरी।
2: मैं आपको,
1: बात की बात नहीं है मेरी, सुन तो। सबको अंदर कर दूंगा, बंद करा दूंगा गैराज पर। छोटू जाएंगे पाई लेने, रोटी का काम क्या है? गाड़ी ड्राइव करेगा।
2: अच्छा सर, सर सर इतना गुस्सा नहीं मनोज जी, इतना गुस्सा
1: नहीं।
2: सर पहली बार मेरी हालत बुरी हुई है मनोज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड।
1: सर सर सर सर सर,
3: आपकी गाड़ी सही सलामत वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दी थी। एक मजाक चल रहा था, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बन गया है आपका
2: मेरे साथ हंस के बोल दीजिए आप।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

देखिए, इस बंदे ने टॉय कार की उस रेस को कुछ इस तरह से सीरियसली लिया कि जिंदगी की असल रेस में बाजी मार ही ली। मिर्ची अंशु। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए कुछ इस तरह से आई हूँ कि एक ऐसी कहानी आपके बीच पेश करना चाहूंगी कि भैया किसी के सपने ने कुछ इस तरह से रूप लिया कि आज देश का सपना इसके चलते पूरा हो ही गया। Well, जरा इमेजिन करें मोनाको की उन लेजेंडरी स्ट्रीट्स को जहां फॉर्मूला रेसिंग दुनिया का ड्रीम माना जाता है। अगर मैं कहूँ कि वहां तिरंगा लहराए और इंडियन नेशनल एंथम की गूंज उठे तो ये सुनने के बाद आपका सीना फख्र से चौड़ा ना हो तो फिर क्या ही हो। वेल, भारत के कुश मैनी ने ये कर दिखाया है। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन ड्राइवर टू विन अ फॉर्मूला 2 रेस इन मोनाको एंड वो भी एक फ्लॉलेस लाइट्स टू फ्लैग विक्ट्री के साथ। वेल, मोंटे कार्लो की वो डेंजरस नैरो स्ट्रीट्स, क्रेजी प्रेशर, पूरी दुनिया का वो देखना और उसके बीच बेंगलुरु के एक लड़के का कामली ना ही सिर्फ रेस फिनिश करना बल्कि नंबर वन पोजीशन हासिल करना, ये गूज बम्स वाला मोमेंट नहीं तो हमारे लिए और क्या है। एंड सबसे खास बात क्या है पता है, इनकी ये सक्सेस रही है ओवरनाइट नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। फॉर्मूला रेनॉल्ट, ब्रिटिश F3, ईयर्स ऑफ ग्राइंड स्ट्रगल, साइलेंट हार्डवर्क एंड अब कुश मैनी अल्पाइन F1 टीम के रिजर्व ड्राइवर भी बन चुके हैं। एंड सबसे इमोशनल बात क्या है पता है, जब पोडियम पर इंडिया का नेशनल एंथम प्ले हुआ तब कुश ने बस एक बात कही, इट्स फाइनली अ ड्रीम कम ट्रू। कुश, आपने सिर्फ हमें खुशी नहीं दी है, सपना जो है ना पूरे देश का साकार किया है। हम तो कहते हैं हमारी कर्म भूमि यहाँ कतर आके देखें, यहाँ पे भी गजब के टूर्नामेंट्स जो हैं, रेसेस जो हैं हम कंडक्ट एंड होस्ट करते हैं। इतना कहना चाहेंगे आप आए, कुछ इस तरह से आपकी हौसला अफजाई होगी कि एक बार फिर से भारत का नाम जो है ना हमारी कर्म भूमि के साथ साथ कतर के साथ साथ पूरी दुनिया में गूंज उठेगा। क्या कहती पब्लिक, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंश, एंजॉय।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: देखिए, आप और हम जो है अपना समर स्वैग बाद में दिखाएंगे, हमसे पहले किसी और ने ये काम शुरू कर ही दिया है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं तो आ ही चुकी हूँ, लेकिन कोई और है जो स्पाइस वाला तड़का हमारे लिए ज्यादा ही लगा रहा है। एंड मैं बात कर रही हूँ कतर के मौसम की। जेनुइनली इसने अपना समर स्वैग दिखाना जो है पूरी तरह से शुरू कर दिया है। एंड भाई, इसी बीच कतर के मौसम विभाग ने ये बात बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ऑफशोर वेव्स जो हैं अब कतर में 11 फीट तक जा सकते हैं, तो इस वीकेंड आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। अगर आपको लगता है कि आप फिशिंग, बोटिंग या सी साइड आउटिंग प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना इस वक्त बेहद जरूरी है भैया। कभी कभी हवा का मूड और ये जो समंदर की लहरें हैं ना, इनका एटीट्यूड दोनों ही बड़ा अनप्रडिक्टेबल हो जाता है, तो भाई ऐसे माहौल में थोड़ा सतर्क रहें। कोई भी लूज आउटडोर आइटम सिक्योर रखें, अननेसेसरी सी ट्रिप्स जो हैं इस वक्त अवॉइड करें, स्पेशली अगर नाइट ड्राइव्स की हम बात करें तो डस्टी विंड्स जो हैं इनसे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। कुल मिलाकर यही कह रही हूँ भैया, थोड़ा इंडोर एक्टिविटी अगर प्लान करने की कोशिश कर रहे हो, घर में दावत वगैरह रखनी है तो मौका भी है, दस्तूर भी, अरे हम भी मौजूद हैं। मिर्ची की पटन को बुलाओ, अच्छा खाना बनाओ, जरूर आएंगे, हम करेंगे एंटरटेन, आप अच्छे खाने का बंदोबस्त करना। क्या कहती पब्लिक? स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: खट खट
1: कौन है?
0: अज्जू।
1: अज्जू कौन?
0: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए
1: खट खट हू दैट
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। उसे इतना कहूँ, वो जो साइलेंस था ना, वो जो पॉज था, अब धीरे धीरे प्ले बटन में बदलने ही जा रहा है। और इसी कमबैक की कहानी का नया चैप्टर है प्रोजेक्ट कतर 2026। 9th of June से लेकर 11th of June तक एट द आइकॉनिक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर एक बार फिर से दुनिया भर के लोगों की मुलाकात इस आइकॉनिक जगह पर होगी। कोई फ्यूचर का सिटी डिजाइन कर रहा होगा, तो कोई स्मार्ट बिल्डिंग्स की बात कर रहा होगा, कोई सस्टेनेबिलिटी, तो कोई इनोवेशन। बल्कि ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं भाई साहब, ये वो जगह है जहां कतर का फ्यूचर डिजाइन होगा। एंड सबसे खूबसूरत बात क्या है, ये इवेंट सिर्फ बिल्डिंग्स के बारे में नहीं है, ये रीबिल्डिंग के बारे में, rebuilding connections, rebuilding energy, rebuilding that feeling that yes, we are back and we couldn't be more excited. तो भाई मैंने जो है अपने कैलेंडर को सेट करने की तैयारी कर ली है, एंटरटेनमेंट वाले एंड एक्सप्लोरेशन वाले आप भी कर लो। फिलहाल स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: यार पता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा अनसर्टन क्या है? सर्टेनिटी।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का घुलते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. यार लाइफ और मार्केट दोनों ही एक जैसे होते हैं, थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल और थोड़े से चैलेंजिंग. लेकिन ऐसे हाल में भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तब होता है जब हमें ये पता हो कि हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है. और कतर ने ये बात एक बार फिर से प्रूफ कर ही दी. Well, मौजूदा हालात को देखते हुए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज टू सपोर्ट द बिजनेस कम्युनिटी एंड मेंटेन मार्केट स्टेबिलिटी. लेकिन इसमें है क्या? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी एंड साथ ही ऑपरेशनल सपोर्ट. मतलब इस वक्त बिजनेसेस को मिलेगा एक ब्रीदिंग स्पेस विथ रेंट वेवर्स, पेमेंट डेफरल्स एंड एक्सटेंडेड डेडलाइंस, ताकि कंपनीज जो हैं वो स्ट्रांग रह सकें, स्टेबल रह सकें और हर हाल में बस आगे की ओर बढ़ते रहें. यार सच कहूँ, ये सब कुछ देखने के बाद ना यही लग रहा है कि ये सब पॉलिसीज नहीं है बल्कि मिनिस्ट्रीज एंड अथॉरिटीज का हमारे लिए एक मैसेज है दैट वी हैव गॉट योर बैक. और जब सारा का सारा प्रोसेस इतना प्रोएक्टिव एंड सपोर्टिव होता है ना भाई, तो अपने आप कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता ही जाता है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल बनती जाती है. बढ़िया है जी. हम जैसे हर एक शख्स के लिए जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के सपनों को साकार करने आया है, उनके लिए इतना रीअश्योरिंग ये मैसेज है कि तुम उड़ान भरो और हम जो है हर हाल में तुम्हारे साथ हैं. सलाम कतर. स्टेडियम टू मिर्ची. बंदी का नाम अंशु.

0: सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रही हूँ, हमारी एक स्कीम आई है, क्या आप लेना चाहेंगे?
1: लेकिन मुझे नहीं चाहिए।
0: ओके सर, बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का
2: हमेशा यही होता है, मैं ही फोन करता रहता हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ, अब ये भाई साहब करेंगे मुझे फोन।
3: वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
1: बात बताओ, इस नंबर से मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लेडी बोल रही थी।
3: यस सर,
1: जरा उनसे बात कराइए मेरी।
3: सर यहाँ पे तो अभी कॉल पे सारी लड़कियाँ हैं, मुझे मालूम नहीं है किससे आपकी बात हुई है। मैं आपके
1: बात बताओ, आप लोग किसी को ऑफर देते हो तो आप साथ में गाली देते हो?
3: सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे गाली तो किसी ने इनको यहाँ देता नहीं है, ऐसा होता नहीं।
1: मेरे पास फोन आया है यहाँ से स्कीम के बारे में,
3: राइट सर,
1: जब मैंने उसको मना किया तो उसने मेरे को गाली दी पलट कर।
3: सर
1: तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर?
3: आई एम सो सॉरी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से
1: बात कर रही
3: हूं, बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों कहा गया है हमारे कस्टमर को। बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का आजा फोन।
0: सर वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
1: पास है ना नंबर, इसी नंबर से फोन आया था।
0: यस सर,
1: गालियाँ दे जा रहा है यार वो।
0: सर कौन?
1: अरे यार मेरे को नाम नहीं पता उसका, मेरे को गालियाँ सुनाई जा रहा है।
0: सर मैं उनसे क्षमा, ऐसा सर होता नहीं है हमारे बैंक में कभी
1: यार,
0: भी
1: क्या
0: मैं...
1: नहीं होता यार?
0: नहीं सर, इस तरह की बात कभी नहीं हुई सर आपके कहने से। हम तो ये
1: फोन आ रहे हैं बराबर, मेरे को गालियां दे रहे हैं।
0: सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है सर, यही तो हमारी सर्विस है। ऐसी गलतियां बाइंदा नहीं होगी सर। बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मुर्गा कहीं का।
2: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये छोटा सा कॉल सेंटर मेरा ही है, ये सारी हरकतें मेरे ही हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
3: सर बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे साथ सर हंस के बोल दीजिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। अरे कोई क्यों, मैं बताती हूँ ना। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे आंशु विद यू। वेल, वीकेंड आते ही मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई करें तो क्या करें। नहीं, सोना है, खाना है, आराम करना है, ये सब कुछ तो है ये मैंडेट है, लेकिन इसके अलावा और क्या ही हो सकता है। वेल, कतर में कुछ इस तरह की एक्साइटिंग एक्टिविटीज इस वीकेंड हो रही है जिन्हें आप किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहेंगे। वेल, अगर आपके अंदर भी कतर में आने के बाद फुटबॉल फीवर आ चुका है, बुखार चढ़ चुका है, तो फटाफट से जाओ यार अमीर कप के फाइनल को देखना। कोई कैसे छोड़ सकता है खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल देयर। ठीक शाम 5:30 बजे फिनाले जो है वो शुरू हो जाएगा, एंड आमना सामना जब मस्त बेहतरीन टीम्स का होगा, एंड उसके बाद आसपास जो हमारी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज होंगी वो ओपनिंग सेरेमनी के पहले का इवेंट, क्लोजिंग सेरेमनी के वक्त का इवेंट। भाई हम जो है ना सिर्फ मैच देखने नहीं जाते, नहीं, लोग हमें देखते हैं, हम जो है माहौल के साथ और भी जो गतिविधियां चल रही होती हैं उन्हें देखते हैं। जस्ट इन केस अगर अमीर कप के फिनाले को देखने आ रहे हैं तो मुझे बता दो यार 5001896। लेट्स गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। भाई कतर का सबसे पुराना एंड सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट, इसे मिस जो है ना बिल्कुल भी ना करना। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: मिर्ची।
1: देखो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुमने बचपन के दौर में ये बात तो जरूर सुनी होगी।
2: मिर्ची अंशु।
1: Hey, welcome back. You're listening to me, Team Mirchi, and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में स्पाइस के साथ मिठास वाला तड़का जो है एक बार फिर से लगा दिया जाए, लेकिन उसके पहले बचपन की कोई तो दास्तान है जो एक बार फिर से पेश कर दी जाए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी है। देखो यार, तुमने अपने दोस्त यारों के साथ मिलकर घर पे जब भी नौटंकी करने की कुछ तो कोशिश की, घर वालों ने कभी ना कभी इमिजिएटली याद दिलाया होगा कि तुम घर पे हो, सर्कस पे नहीं। ऐसी हरकतें जो है ना ही करो यार। ऐसी हरकतों से हमारा दिल तो बहलता था, घर वालों का ना बहला तो हम क्या ही करें। मतलब हमें तो आज तक समझ नहीं है वो ऐसा बोलते थे तो क्यों बोलते थे। कोई ना यार, उन्हें हमारी ये नौटंकी रास ना आई, लेकिन बाहर पे जो इस वक्त नौटंकी चल रही है वो तुम्हारे अलावा तुम्हारे घर वालों को भी बहुत रास आएगी। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑनगोइंग सर्कस एट हयात प्लाजा फंटाना बाय सर्क डू लिवान। अगर लगता है कि आपको एक बेहतरीन सा सर्कस देखना है, बच्चे बूढ़े और जवान सबका एंटरटेनमेंट करना है, तो फटाफट से पहुंच जाएगा हयात प्लाजा मॉल। वेल, थर्सडे से लेकर सैटरडे तक याद रखिए टाइमिंग जो है वो फिक्स्ड है, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे, एंड सेकेंड शो शुरू होता है 7 बजे से लेकर रात 9 बजे खत्म होता है। बढ़िया जी, जाइए एंजॉय करके आइए, एंड एक्सपीरियंस कैसा रहा है मुझे बताना जरूर। इन्फॉर्मेशन तो मैंने शेयर की ना, 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
3: पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

0: किस झुके का नहीं सला।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल।
2: Only on मिर्ची, it's hot।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
6: Cut, cut.
7: Who there?
6: Whom are you?
7: Whom are you who?
6: Aray, whom are you looking for, madam?
7: Cut, cut. Who there?
8: Only on 89.6 Mirchi 1.
9: Mirchi,
8: it's hot. Mirchi, fresh maal.
10: Dreamy vibe और romantic feel के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: तो बस आज का जो प्लान है ये तो सेट है।
2: मिर्ची अंशु
1: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. सच कहूँ, स्कूल कॉलेज टाइम का दिन जो है ना मुझे जरूर याद आता है, जब जब मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई प्लान बनता है, दैट पॉटलक, कि भैया हर कोई जो है अपने अपने घर से एक
0: रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: तो बस आज का जो प्लान है ये तो सेट है।
2: मिर्ची अंशु
1: स्कूल कॉलेज टाइम का दिन जो है ना मुझे जरूर याद आता है, जब जब मेरे फ्रेंड्स

टाइम में यही होता था बेटा, अपना अपना टिफिन का डब्बा खोलो, हर किसी के घर से एक एक आइटम आता था। वो बात अलग है, तब हम नहीं बनाते थे, मम्मियाँ बनाती थी, लेकिन फीस्ट जो है हमारा हो ही जाता था। फाइनली लंच टाइम जो है हो चुका है एंड आई एम रियली हंग्री, आई एम स्टार्विंग एट द मोमेंट एंड आई जस्ट कांट वेट टू सी सबने क्या बनाया। वैसे आज मैंने अगर कुछ बनाया तो वो है एक मीठा, बहुत ही टेस्टी सी मैंने आज रस मलाई बनाई हुई है। अगर आपको लगता है कि आपको भी मेरे हाथ की खानी है, अपने घर में दावत पे बुलाओ जी, मीठा जो है मैं लेके आऊंगी। टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन, विच इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये पानी पूरी वाला हर बार सूखी पूरी का एक्स्ट्रा चार्ज करता है, क्या करूं?
1: अरे कोचू, पानी पूरी गीली होती है, तू सूखी मांगेगा तो वो सुखाने का एक्स्ट्रा पैसा लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in...
3: हर हफ्ते मैं यहां आता हूं 20 गाने आप और ये काउंटडाउन। लेकिन आज एक बात कहनी है पहले। बॉलीवुड में बहुत शोर है, बहुत चमक, बहुत पीआर, बहुत नॉइज, और उस शोर में कुछ गाने होते हैं जो सच में फील किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिए गए हैं। वो गाने अलग सुनाई देते हैं हमेशा। आज का शो उन गानों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया, बस काम किया और वो काम आप तक पहुंचा इस काउंटडाउन के जरिए, मेरे जरिए। हाय, आई एम सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। और मैं आपको वो सब सुनाऊंगा जो डिजर्व करता है सुना जाना, नंबर 20 से नंबर 1 तक। तो शुरू करते हैं विद गाना नंबर 20, रणवीर सिंह, धुरंधर, इश्क जलाकर।
0: नंबर 20।

और फिर नंबर 19 पर एक डेब्यू सॉन्ग आदित्य रिखारी और साथ में है श्रेया घोषाल जो 2026 में बिल्कुल एक जेंजी सिंगर की तरह सुनाई दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। क्लियरली चीटिंग इज कूल। नंबर 19।

0: ये था क्या कमाल है नंबर 18 इस हफ्ते। एआर रहमान का म्यूजिक, इरशाद कामिल के अल्फाज और दिलजीत की आवाज। और इन गानों के बावजूद लोग कहते हैं नहीं यार, पुराने गाने ही अच्छे होते थे। मैं हूं सुरेन और आज मैं उस डिबेट को सीधा खत्म करना चाहता हूं। इरशाद कामिल, जिनसे ये बात मैंने खुद पूछी, उनका जवाब सुनिए।
1: Actually, I don't miss anything in today's song. क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है, और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे, और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं, और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुँचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। सो आई डोंट थिंक आई डोंट मिस एनीथिंग।
0: इरशाद भाई ने जो कहा वो सिर्फ सच नहीं है, वो अनकंफर्टेबल सच है। हम 250 गाने सुनते हैं लेकिन बाकी के 50,000 का क्या? वो दब गए, दे वर फॉरगॉटन। इसलिए पुराना जमाना परफेक्ट लगता है क्योंकि उसके बेकार गाने इतिहास ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। आज का म्यूजिक वीक नहीं है, आज का म्यूजिक बहुत ज्यादा है, एंड उसमें से भी एक चन्ना मेरेया है, एक सैयारा है, और ये वाला गाना भी है क्या कमाल है। ये गाने अगर 1975 में आते तो आज हम इन्हें क्लासिक सॉन्ग्स कहते। मेरे लिए आज का पिक ऑफ द वीक भी इरशाद कामिल का ही है। रहमान साहब का म्यूजिक, इरशाद भाई ने क्या कमाल लिखा है, एक गाना जो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका है, संग बाय मोहित चौहान। दिस इज तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो
3: हेलो रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोलिए
3: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रोफाइल देखा था, क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद आ गया है, चाह रहे थे थोड़ा सा आपके बारे में पूछना। आप मेरे को अपनी थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, एज बता देंगे कितनी एज है आपकी?
2: प्रोफाइल में लिखी हुई है, आपने देखी नहीं? 25 साल है।
3: अच्छा, वही मैं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। रेखा बता देंगे आप ये कितनी पढ़ी लिखी है? आप थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना?
2: मैंने बीए किया है।
3: अच्छा रेखा, आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि लड़के ने आपको पसंद कर लिया है और मैं चाहता रहा था आपके पापा से बात करना, बल्कि लड़के के पापा भी आपको चाह रहे थे आपसे मिलना। प्लीज माइंड मत करना, आपके कोई टांग में तो चोट नहीं लगी? प्लीज इसको।
2: पर क्यों?
3: नहीं, मैं ऐसी है पूछा था। अच्छा मेरे को रेखा एक चीज बता दीजिए, आप हील वील तो ज्यादा नहीं पहनती ना?
2: लेकिन क्यों? हील नहीं, तो आपको पूछना क्या है बताइए?
3: नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हील पहनती है क्या आप? नहीं पहनती? मैं
2: हील तो कभी पहनते भी हैं, कभी नहीं भी पहनते, लेकिन
3: ज्यादातर आप नहीं पहनते हैं।
2: ज्यादातर
3: ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये भाग के शादी करना चाहता है, तो मैं यही देख रहा था कि आपके कोई टांग में चोट तो नहीं है, कहीं हील वील तो नहीं पहनती, कहीं भागने में परेशानी हो जाए। तो इस लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे।
2: क्या बात कर रहे हैं आप?
3: नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस लड़के के माँ बाप आएंगे, ये थोड़ा सा दौड़ा के देखेंगे। अगर आप भाग के शादी कर सकती हैं तो ही वो करेंगे ना, लड़के की बड़ी ख्वाहिश है। बल्कि इसके माँ बाप ये कहते हैं, हमारे चार लड़के थे, सबने ऐसी कर लिया, हम चौथी शादी लड़के की करते हैं, हम वो लड़के भगा के करना चाहते
2: हैं। मेरी बात सुनिए
3: दोबारा, कमाल है, अभी से भाग गई यार।
2: हेलो
3: देखा, आपने फोन काट दिया यार, आप हील नहीं पहनती, आपके टांग में चोट लगी, भागने में प्रॉब्लम क्या
2: है? नहीं,
3: दोबारा फोन मैं आप ही को तो करूंगा, लड़के ने आपको पसंद कर लिया, लड़के
2: नहीं बकवास।
3: अच्छा तो फोन मत काटिएगा, फोन मत करिएगा, मेरी बात सुनिए रेखा। रेखा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं आपकी शादी नहीं करा रहा, आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप मुर्गा बन गई हैं, और प्लीज गुस्सा नहीं और फोन मत काटना यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
2: मेरी शादी के बाद मेरे डैडी से ही करिएगा।
3: नहीं, मैं उनसे जरूर कर लूंगा, लेकिन डैडी से तो नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप प्लीज बोल दीजिए।
2: नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी।
3: मेरी बात सुनिए, आप अगर कुकड़ू को बोल देंगे मैं आपकी शादी करा दूंगा, जल्दी से करा दीजिए, मेरा मतलब जल्दी से बोल दीजिए।
2: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
11: Number 17.

जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलर्स, मैन शी इज अनरेप्लिकेबल, वो सिर्फ वो है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक अलग बात करना चाहता हूँ, म्यूजिक के बारे में, पर्सनल म्यूजिक के बारे में। जब भी आप कोई गाना सुनते हैं, एक मोमेंट आता है उस गाने में, एक छोटा सा मोमेंट जो सडनली आपका हो जाता है। देखो सबका अलग होता है और वही तो मैजिक है। जैसे दीवानियत को ही ले लो, दुनिया उस कोरस पर दीवानी है, वो मल्टी वॉइस बिल्ड, वो सब जानते हैं, सब गाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो गाना शुरू होते ही खत्म हो जाता है, पहले पल में, पहली आवाज।

ये यही विशाल की ये सॉफ्ट ऑलमोस्ट हेजिटेंट आवाज जैसे किसी दर्द को संभाल के रखा हो, वहां नहीं जाता जहां सब जाते हैं, सीधा अंदर पहुंचता है। और तब मुझे समझा कि गानों में सबका दरवाजा अलग होता है। ठीक चन्ना मेरे यार, अब ये तो एक अलग ही चैप्टर है। अरिजीत सिंह का वो हुक, इट्स अ क्लासिक, इट्स इमॉर्टल, सब जानते हैं। लेकिन जब वो गाना खत्म होने लगता है, जब बाकी सब ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होते हैं, मैं वहां रुक जाता हूँ।

ये रिपीट, ये बार बार कहना, जैसे कोई जाने से पहले एक बार और मुड़ के देख रहा हो। और फिर कुछ दिन पहले एक नया गाना आया और उसने वही किया जो विशाल की आवाज ने किया था, जो अरिजीत के उस आउट्रो ने किया था। एक स्पेसिफिक मोमेंट, एक स्पेसिफिक फीलिंग ऐसी जो मुझे लगा कि यार मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, इस दर्द को मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ।

0: ये वाला हिस्सा, बस ये वाला जो सडनली एक टाइम मशीन बन जाती है। और आज ये गाना पहली बार इस काउंटडाउन पे आ रहा है, नंबर 15 पे, फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज एतबार। सुनिए, पूरा सुनिए और ढूंढिए वो एक हिस्सा जो सिर्फ आपका होगा।
1: नंबर 15।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची इट्स हॉट
6: अर्ज किया है
7: इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
4: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
0: Number 12.

धुरंधर रॉकिंग द काउंटडाउन दिस वीक ऑन नंबर 14 एंड रणवीर के साथ यू गॉट सारा अर्जुन, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नाम, लेकिन उससे भी ज्यादा एक प्रॉमिसिंग एक्टर। और इस नाम ने मुझे याद दिलाई एक और सारा की, सारा अली खान। 2018 केदारनाथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक डेब्यू हुआ जिसे पूरी इंडस्ट्री ने नोटिस किया, मैंने भी उन्हें नोटिस किया, और उस फिल्म के बाद आई जेन्युइनली बिकेम अ फैन ऑफ सारा अली खान। लेकिन 2026 में पिक्चर क्या है? देयर्स अनन्या पांडे सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, देयर्स जानवी कपूर सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, एंड देन देयर इज सारा अली खान। पति पत्नी और वो दो में शी इज वन ऑफ द टू अफेयर्स। तीन लड़कियां, एक ही दरवाजा, तीन अलग अलग मंजिलें। और इस हफ्ते नंबर 13 पे एक गाना है कॉल्ड आवारा अंगारा फ्रॉम तेरे इश्क में, कृति सैनन का ये गाना है, जो इस जेनरेशन की सबसे कमिटेड एक्ट्रेसेस में से एक है। ये सब देख के दिल में एक सवाल उठता है यार कि सारा, वो केदारनाथ में दिखने वाली जो कमाल की टैलेंट थी, आखिर वो गई कहां? मैं आज भी मानता हूं वो टैलेंट अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, लेकिन टैलेंट अकेला काफी नहीं होता, परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं, चॉइसेस चाहिए होती हैं, एक कमबैक चाहिए होता है जो सिर्फ स्क्रीन पे ना। और उस कमबैक की याद, वो पहली बार, वो केदारनाथ वाली सारा अली खान। ये है इस हफ्ते का रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, जानेसार बाय अमित त्रिवेदी। टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से आई एम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
4: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुरशरण सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
3: शाहरुख खान इतना चार्म कहाँ से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: खटखट,
6: हू दैट?
5: अकबर।
6: अकबर हु?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: खटखट, हू दैट?
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 12।

पति पत्नी और वो दोस्त है रूप दी रानी अपने दूसरे हफ्ते में है यूर ऑन नंबर 12 एक फिल्म चीटिंग के बारे में ग्लैमरसली हैप्पीली एंड कॉमिकली। हाय मैं हूँ सुरेंद्र सुंदरम और अभी जो आने वाला है नंबर 11 पे वो भी उसी दुनिया से है। है जवानी तो इश्क होना है। गाने का नाम है ब्याह करवा दो जी। ग्लॉसी कैची एंड इक्वली फॉरगेटेबल। और मैं जानता हूँ 2 महीने बाद ये गाना कोई नहीं सुनेगा। कैन आई बी ऑनेस्ट हियर? यार मैं थक गया हूँ। बीवी नंबर 1 नो एंट्री दे दे प्यार दे मर्डर गहराइयां कभी अलविदा ना कहना और अब ये एक ही कहानी बार बार अलग चेहरे अलग गाने लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला। और सच ये है कि हम और मैं भी इस हम में शामिल हूं। हम अपने ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं। हम सोचते हैं कि ऑडियंस कॉम्प्लेक्स स्टोरीज नहीं चाहती, उन्हें चाहिए सिर्फ चमक, उन्हें चाहिए सिर्फ शोर। वो लिसनर जो कानपुर में बैठा हुआ है, वो लिसनर जो दुबई में है, वो उतनी ही गहराई मांगता है जितनी कोई मांग सकता है। लेकिन हम उन्हें देते हैं क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है कॉम्प्लेक्स लिखने की, कॉम्प्लेक्स दिखाने की, कॉम्प्लेक्स फील करने की। और जब कहानी में गहराई नहीं होती तो गाने में भी नहीं होती। इसलिए सैयारा जैसा गाना एक याद बन जाएगी मगर व्याह करवा दो जी नहीं बन पाएगी। फर्क सिर्फ फिल्म मेकर्स की गट्सी चॉइसेस का होता है और अभी वो गट्स कहाँ हैं वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये मेरा काम है हर हफ्ते इस स्टूडियो में आपके लिए बेस्ट गाने ढूंढना उस शोर में से। और इस हफ्ते नंबर 11 पे है ये व्याह करवा दो जी। तब है जवानी तो इश्क होना है।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: मेरी आवाज बैठ गई है, मैं क्या करूं?
2: अरे तो आवाज को अपना कंफर्म टिकट दिखाओ, उसको बोलो खड़ी हो जाए।
3: साले का खोपड़ी तोड़ साले का।

0: Energy One. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Number 10.

यार ये गाना चांद मेरा दिल जैसे ही चलता है मेरे दिमाग में एक और ही गाना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी वही गाना चल रहा होता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते और शायद कुछ करना भी नहीं चाहते। क्या

यू नो कोइंसिडेंस क्या है कि ऋषि कपूर साहब की वो फिल्म हम किसी से कम नहीं, वो गाना, वो फीलिंग, इट फील्स सो फ्रेश इवन नाउ। और यही तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कोई नहीं बोलता। हमारे सबसे बड़े फिल्म मेकर्स, हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार्स, वो भी उसी फीलिंग के पीछे भाग रहे हैं, इंक्लूडिंग ए सन रणबीर कपूर, क्योंकि पापा की विरासत मिली जीन्स में, सरनेम में, लेकिन पहली बड़ी फिल्म के लिए उन्होंने सीधा पापा का गाना ले लिया। बचना।

0: औरों से जुदा।
1: बचना है हसीनों, पूरी एक जेनरेशन नाच रही थी और उन्हें खबर तक नहीं हुई कि ये तो उनके अंकल ऋषि कपूर का गाना है। एंड देन यू गॉट शाहरुख खान, जिन्होंने किया वही काम जो सिर्फ शाहरुख खान कर सकते हैं। उन्होंने ऋषि सर का एक और गाना लिया और उस पर एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी।

0: ओम शांति ओ। 2007 अ ब्लॉकबस्टर, एक गाना जो लगभग 50 साल पहले लिखा गया था पर शाहरुख ने उसे इमॉर्टल बना दिया। ऋषि कपूर इजंट विद अस एनीमोर, मगर बॉलीवुड उन्हें कभी भूलने नहीं देगा एंड आई लव देम फॉर इट, इट विल कीप हिम अलाइव। लेकिन ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ खत्म नहीं होती। नंबर 9 पर इस हफ्ते है सैयारा, जिसका दिल मोहित चौहान की उस आवाज में धड़कता है जो एक था टाइगर में सुनाई दिया था। पुरानी रू नया टेक, हमेशा से हमेशा तक। दिस इज सैयारा बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 9।
1: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: क्या बना
2: मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: उसको पेरों को पीछे लगा के उसको स्टिंग को आगे करो।
4: हेलो, हाँ जी,
5: ये भाई साहब ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
4: कौन सी गाड़ी आपकी?
5: पेरो है, स्टीम है, एक सेकंड आप होल्ड करें।
6: अरे बेचारा आ गई क्या? तो रात उठाइए वहाँ से, वो अब तक नहीं पहुँची। उसका फोन आया मेरे पास, रात उठाइए गाजियाबाद से उसने, दोनों आ गए।
5: हेलो रोहित जी, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का?
4: बताइए कैसे बताऊँ मैं हिसाब किताब, बताओ कौन सी गाड़ी आपकी?
5: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं चेक नहीं दे पाऊंगा, मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
4: ठीक है,
5: ठीक है। इसमें मेरी अभी तो आप लिखिए एक
4: मॉडल
5: आप लिख लो इसका। एक सेकंड, आराम प्रकार से गाजियाबाद से उठाइए, क्या मॉडल है उसका?
4: 2000।
5: यार रोहित, एक तो यह है कि ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह। और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं, 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो, किसी तरह गाड़ी इंश्योर कर दो, ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं, बस बेच के फिर मेरा स्यापा खत्म। मैं नहीं जानता कहां की गाड़ी थी, कुछ था।
4: हेलो,
5: हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे भाई साहब?
4: अजय शर्मा।
5: अजय जी, यस मेरे पास 28 गाड़ियाँ हैं इस वक्त।
4: अच्छा, आपकी अपनी है?
5: अब उसमें आपको क्या लेना है यार, मेरी अपनी
4: उसी।
5: मैं आपको बताता हूँ, 3 गाड़ियाँ गाजियाबाद से उठाई हैं, 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं, बाकी सारी दिल्ली की हैं।
4: चोरी की हैं क्या?
5: हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
4: सारे देखना पड़ेगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
5: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो, आप मैं
4: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
5: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा?
4: बात करूंगा ना आपसे।
5: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
4: अरे सर, ऐसा काम नहीं है मेरा ना।
5: आप नंबर लिख लेना, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो, एक सेकंड रुके।
6: अरे तो ना बिक रही तो गाड़ी को काट देना, उसके पार्ट्स बेच दे।
5: हाँ जी भाई, तो आप ये कर दोगे ना पूरे?
4: शाम को बताता
5: हूं। नहीं, आप वैसे कर दोगे ना पूरे?
4: क्या कर रहा हूं मैं, शाम को फोन करके बताऊंगा।
5: अजय जी, ऐसा है, ये जितनी गाड़ियां है ना, ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा।
4: तो मैं आपको देखना चाह रहा था कि ऐसे
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and the Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
1: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
9: शुरू हो जाती है, हो जाती है।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
1: FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
11: नंबर 7।
12: Say whoa!

0: ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है? धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दान ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज जेम्स विद भीगी भीगी।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फन लैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Our business is our business, none of your business.
7: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
8: Qatar का number one radio station.
9: 89.6
10: FM, Mirchi One. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
11: Number 5.

तेईस हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। बस यूट्यूब पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3,000 लोग जानते हैं इसे। That's it. That's his subscriber count. लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। The song isn't soft, it's not gentle, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

0: चिकन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अजय देवगन, फर्ज करते हैं माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं। देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर्स केआरके, देयर्स करण जौहर एंड देयर्स काजोल। दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे।
4: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
3: Because that's the game. हमको दोनों को तो बचाना ही पड़ेगा।
4: मुझे बचाने ही नहीं है। आई ब्रेक द रूल। मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ।
3: ऐसा ही हूँ मैं।
4: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं।
3: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: कट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट हो दैट।
7: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
8: नंबर 2।

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा. अगेन नंबर टू दिस वीक. माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट. तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ. बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है. वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म. एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं. और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं.
1: Bollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievements speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price and that is something that could be deeply upsetting because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it or have they been paid for it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me and because even I'm sometimes paying for it. So I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है. जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ. एंड देन और फिर एक और कहानी आती है. December 5, 2025 धुरंधर. March 19, 2026 धुरंधर 2. रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं. आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं. वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो. ऑर्गेनिक पीआर? अगेन एब्सोल्युटली जीरो. सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज. 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर. और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर 1 है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर. करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ. एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट. They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1.
2: Number 1.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: सर बाइक चलाते चलाते मच्छर मुंह में चले जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या करूं?
3: अरे गोचू, जब तेरे को पता ही है मच्छर सामने से आ रहा है, तू रॉन्ग साइड क्यों चला रहा है?
4: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: यल्ला हबीबी ताल गोल गोल 89.6 मिर्ची वन पर मैं हूँ आरजे मस्मोर गौरव। आज आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, अल साद का या फिर अल गराफा का? डिफेंडिंग चैंपियन अल गराफा के सामने है अल साद क्लब एंड आई एम श्योर आज खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा एंड जीतेगा वही जो खेलेगा सही। इसी उम्मीद से कि एक जबरदस्त फुटबॉल मैच अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपनी फेवरेट टीम डिसाइड कर लीजिए एंड उसको चीयर कीजिए। गराफा अपना टाइटल डिफेंड करना चाहेगा एंड वही दूसरी तरफ अल साद चाहेगी कि वो ट्रॉफी इस बार उनके हाथ लगे जिसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। इसी उम्मीद में कि एक शानदार फुटबॉल मैच देखने को मिलेगा। मस्त मौला गौरव भी अब से थोड़ी देर में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कतर के फुटबॉल का बादशाह कौन बनेगा ये आज शाम 7 बजे तक तय हो जाएगा। 89.6 मिर्ची वन पर शुरुआत करते हैं शाम शानदार की। हफ्ते का बेस्ट लेकर आया हूं मिर्ची पर। इट्स हॉट
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। मिर्ची फ्रेश माल।
2: ग्रूवी फील और कैची वाइब के साथ सुनो जब तलक।

0: गाने को गाया है अरिजीत सिंह और अकासा ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। सुनते रहिए जब तलक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो मनोज जी।
2: हाँ जी
1: सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपने गाड़ी जीती ना सर्विस के लिए
2: जीती।
1: हाँ सर नहीं सर, वो अभी तो ठीक नहीं हुई है सर। मेरी बात हो गई है 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है ये।
2: 40,000 रुपए?
1: हाँ सर, वो मेरी कबाड़ी वाले से बात हुई है, 40,000 रुपए दे रहा है सर वो, और मना लिया उसे।
2: कोई तीसरी सर्विस है? किस चीज के कबाड़ी?
1: नहीं तीसरी सर्विस है, मेरे को मालूम है। आप देखे आए ना गाड़ी, ये सर्विस के लिए हमको दी थी ना आपने, तो उसकी बात हो गई है। 40,000 रुपए देने को तैयार है कबाड़ी वाला।
2: कबाड़ी वाला मतलब किस चीज के देने के लिए तैयार है? गाड़ी नई है, सर्विस तीसरी हो रही है।
1: नहीं सर,
2: शॉप में दी है कबाड़ी, मतलब समझ नहीं आ रही मेरे।
1: मैं समझाता हूँ सर। आपकी जो गाड़ी थी ना
2: जी,
1: उसकी नॉर्मल सर्विस हो गई थी।
2: हाँ।
1: बढ़िया चकाचक हो गई थी सर। हमारा जो ये मैकेनिक है ना छोटू, ये टेस्ट ड्राइव पे ले गया था उसको। अच्छा जब ये गया है ना, तो ये जो रेल की पटरी आगे पड़ती है ना हमारे वर्कशॉप से, रेलवे पटरी पे इसकी गाड़ी, इसने गाड़ी बंद कर दी सर पटरी पे।
2: अच्छा,
1: इस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं सर, वहाँ से ट्रेन आ रही थी सर, आपकी गाड़ी के परखचे उड़ा दिए उसने। अब मैं तो उसको चपेट मारी है, रो भी रहा है बैठ के। तो वो कबाड़ी वाले को दिखाया, जो सारा तो सामान बिखर गया है, जो बचा है उसके 40,000 दे रहा है।
2: पागल हो गया है तू क्या?
1: सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा
2: हूँ,
1: 40,000
2: रखा तू नहीं चाची, सब बकवास कर जा रहा है
1: सर। ट्रेन की पटरी में अटक गई, हम क्या कर सकते
2: हैं? पटरी ठेका ले रखा ट्रेन की पटरी।
1: मैं
2: बात वास्ती बात नहीं है मेरी, सुन तो।
1: मैं
2: कोर्ट से लेकर सब सबको अंदर कर दूंगा, बंद करा दूंगा गैराज पर। आज छोटी जाएंगे पाई लेने, रोटी का काम क्या है?
1: अच्छा सर इतना गुस्सा नहीं मनोज जी, इतना गुस्सा
2: नहीं। सर
1: पहली बार मेरी हालत बुरी हुई है मनोज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड।
2: सर
3: आपकी गाड़ी सही सलामत वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दी थी। एक मजाक चल रहा था, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बन गया है आपका सर,
2: थोड़ा
3: सा
2: मिल गया।
3: मेरे साथ हंस के बोल दीजिए आप
2: कुकड़ू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ये पकड़ा
6: सलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
4: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: जी सी सी में फुटबॉल के अलावा बाकी गेम्स को भी जोश खरोश के साथ खेलते हैं। और इसी से अब आप भरपूर मनोरंजन देख पाएंगे। फोर्थ जी सी सी गेम्स कतर में आ रहा है। फोर्थ जी सी सी गेम्स दोहा 2026 की अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और वो बड़ा रीजनल इवेंट जो है 11th मई से 22nd ऑफ मई तक होने जा रहा है कतर ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर्स में। शेख अब्दुल्ला बिन साउद अल थानी ने बताया है कि ये गेम्स जी सी सी नेशंस के बीच दोस्ती को, उनके बीच संबंधों को और मजबूत करता है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है बल्कि यूथ के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है ताकि वो भाई स्पोर्टिंग वैल्यूज को आराम से सीख सके, प्रमोट करने का एक बेहतरीन मौका बनता है ये स्टेज। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ये शानदार स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीसीसी के सारे यंग टैलेंट को सामने लेकर आता है और उनके कल्चर हेरिटेज को एक नए अंदाज में सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। तो ये तैयारियां आप जोर शोर पर 11 मई से 22 मई हमारे कतर में ये होने जा रहा है दोहा 2026। एंड मैं आपको बता दूं 19 डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरीज है जिसमें हैंडबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, स्विमिंग, बास्केटबॉल, पैडल, स्क्वॉश, इक्वेस्ट्रियन एंड शूटिंग, ये सारे गेम्स हैं। जीसीसी के यूथ के लिए एक बड़ा मौका, वो स्टार परफॉर्मेंस दे और जीसीसी के स्टार बन जाए और क्या पता इन्हीं में से बहुत सारे ओलंपिक में अपने अपने देशों के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए। सो सारे एथलीट्स को ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर जब भी ऐसे गेम्स होते हैं ना हमें बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए ताकि उनके अंदर भी जो ना स्पोर्टिंग वैल्यूज आए, वरना आजकल तो उनके लिए जिंदगी में स्पोर्ट्स मतलब मोबाइल पे सब खेल लो, वही तो दुनिया है। 70 गज का मैदान अब 7 इंच की स्क्रीन में है। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हज पर जाने वालों मेरी इस बात पर अपना कान लगा लो। 89.6 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज का सफर ना एक सफर नहीं है बल्कि हम सब के लिए जिंदगी का ये एक सबसे बड़ा ख्वाब होता है, मोमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम, और इसके लिए ना जाने लोग कितने सालों तक इंतजार करते हैं। अब इस मुकद्दस इबादत की रूह को बरकरार रखने के लिए हमें उन रूल्स का भी एहतराम करना पड़ेगा जो हमसे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है। यस, बिना ऑफिशियल परमिट के हज की कोशिश के लिए बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। अगर आप बिना ऑफिशियल परमिट के हज करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर आप धरे जाते हैं, सऊदी रियाल 20,000 का फाइन हो सकता है, और इतने ही नहीं, वायलेटर्स को डिपोर्ट किया जाएगा और उन पर 10 सालों का बैन लग जाएगा, जो अब आपको दोबारा उस पाक जमीन पर जाने के लिए रोकेगा अगले 10 सालों तक। और ये कानून सख्ती से लागू किया जा रहा है 18 अप्रैल से लेकर 31 मई 2026 के बीच। जो भी लोग हज करने जा रहे हैं उन्हें इन सारे रूल्स को ओबे करना होगा, रिस्पेक्ट करनी होगी, जिम्मेदार बनना होगा, क्योंकि ऊपर वाला हमें यह भी सिखाता है कि हमें उन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो लोग हमसे कह रहे हैं, और जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि जब अपने आप ख्वाब को मुकम्मल करने जा रहे हैं तो किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे, किसी गलत काम को तवज्जो नहीं देंगे, और पूरी कानूनी तैयारी के साथ ही इस रास्ते पर निकलेंगे हज यात्री बनकर, ताकि आपकी हज यात्रा सफल हो और आप जब लौटे तो खुशियां हम सब में भी बांट पाए। इस उम्मीद से कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर ही हज यात्रा पर जा रहे हैं। मस्त मौला गौरव आपसे कह रहा है, दुआ में मेरा नाम जरूर याद रखेगा, और क्या पता ऊपर वाले से जब आप हमारे लिए प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना पूरी हो और हमारी भी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कौन है?
5: स्टेन।
4: स्टेन कौन?
5: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
6: खट खट, हू दैट?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

धूम मचाले धूम। मस्त मौला गौरव। भाई जहाँ पे वैलेंटिनो रॉसी वेस्टअपन धूम मचाते हैं वहां धूम मचानी है, तो बारी अब हमारे पास आ गई है। यस, मस्त मौला गौरव यहाँ आपको बताना चाहेगा कि लुसेल इंटरनेशनल सर्किट पर हाई ऑक्टेन इवेंट पूरे मई के महीने में अनाउंस कर दिया गया है। अब हमारे अंदर का जो धूम मचाले वाला अरमान है वो हम पूरा कर सकते हैं। हाँ जी, साइकिल से सुपर कार तक हम सब अपने आप को बचपन से लेकर आज तक जॉन इब्राहिम के साथ साथ कभी माइकल शुमाकर जैसा फील करते हैं। जब भी हम तेज रफ्तार चीजों को चलाते हैं ना, तो वो एड्रेनलिन रश जैसे ही हमारे अंदर बढ़ता है, हमें लगता है यार रफ्तार ही जिंदगी का असली मकसद है। लेकिन फिलहाल अब बचपन की वो पुरानी साइकिल छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, आप अगर अपनी मोटरबाइक या फिर कार को ड्राइव करना चाहते हैं तो आपके पास एक मौका लेकर आए हैं। यस, हम आपको बता दें वर्ल्ड क्लास लुसेल इंटरनेशनल सर्किट पर हाई ऑक्टेन मोटरिंग एंड फिटनेस एक्टिविटीज इस मई के महीने में हो रही है। 6 मई से लेकर 31 मई तक होने वाले इसमें बहुत सारे डिफरेंट डेज हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट मई 8 है जहां पर कार्स एंड मोटरबाइक्स ट्रैक डे है। एंड इसके अलावा मोटरबाइक ट्रैक डे फिर से लौटेगा 22 मई को एंड 23 मई को कार्स ट्रैक डे। इसके अलावा बाकी दिनों में मिक्स ट्रेनिंग डे है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं। एंड याद रखिए, आप या तो 18 या उससे ज्यादा होने चाहिए, लेकिन अगर आपका एज ग्रुप 13-17 है सो यू शुड बी विद योर पेरेंट और अ लीगल गार्डियन। आई एम श्योर बहुत बड़ा मौका है दोस्तों उस इंटरनेशनल सर्किट पर अपने अरमानों को धूम मचाले स्टाइल फील देने का, जिस पर आप अभी तक सिर्फ सपना और बड़े बड़े स्टार्स को ड्राइव करते देखते आए। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: सर, सर मुझे बात करनी है आपसे। ऑफिस में काम मैं करता हूँ और क्रेडिट मेरा टीम लीडर ले जाता है, मैं क्या करूँ?
0: तो आपका प्रॉब्लम है कि क्रेडिट आपका टीम लीडर ले जाता है। एक काम करो, बैंक जाओ, क्रेडिट उधर भी मिलता है।

एक बार जो कतर ने कमिटमेंट कर दी तो वो उस पे खरा उतरता है। और उसका एक प्रूफ मिला है हमें अभी हाल में, यस 2025 एमरल्ड स्काई एनुअल रिव्यू में, जो कि सीरियम नाम की एक कंपनी करती है। कतर एयरवेज को दुनिया के सबसे एमिशन एफिशिएंट एयरलाइन के रूप में मिला है, यस सबसे एमिशन एफिशिएंट लार्ज कैरियर डिक्लेयर किया गया है इसको। और इसका मतलब यह कि कतर एयरवेज ने अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे कि रायन एयर, टर्किश एयरलाइन सबको पीछे छोड़ दिया है और पर किलोमीटर सबसे कम कार्बन एमिशन एमिट कर रही है। वेल, ये बताता है कि कतर अपने कार्बन फुटप्रिंट में जो कमी ला रही है उसका किस तरह से ग्लोबल इम्पैक्ट बढ़ेगा। ये पॉजिटिव बात यह भी है कि ग्रीन हाउस गैसेस कम छोड़ी जा रही हैं, कतर इस पर पूरा ध्यान दे रहा है और एक तरह से फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ी है और एनवायरमेंट के लिए जो कमिटमेंट है कतर का वो उस पर खरा उतर रहा है। सस्टेनेबिलिटी को, हेल्दी एनवायरमेंट के लिए दुनिया को लीड करने की जो एक सोच है वो कतर दे रहा है। एंड आई एम श्योर इस पूरे कमिटमेंट के लिए जोरदार ताली तो बनती है दोस्त, यस, क्योंकि भविष्य में सब कुछ अच्छा हो, ग्रीन फ्यूचर हो, इसी के लिए कतर का ये कमिटमेंट। और अब इस तरह का ये तमगा मिलना कि कतर एयरवेज वर्ल्ड्स मोस्ट इमिशन एफिशिएंट एयरलाइन है, ये बता रहा है कि कतर एकदम राइट डायरेक्शन में चल रहा है एंड हम सबको इस पर प्राउड फील होना चाहिए। 89.6 मिर्ची 1, थैंक यू टू कतर एयरवेज जो अपने हर कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं और कतर की उस हुकूमत को सलाम जो अपने हर विजन को एकदम सही डायरेक्शन में लेकर आगे बढ़ रही है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Sir, very good evening, mate. बैंक से बोल रही हूँ, हमारी एक स्कीम आई है, क्या आप लेना चाहेंगे?
1: लेकिन मुझे नहीं चाहिए।
2: ओके सर, बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का
3: हमेशा यही होता है, मैं ही फोन करता रहता हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ, अब ये भाई साहब करेंगे मुझे फोन।
4: अ वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
1: बात बताओ, इस नंबर से मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लेडी बोल रही थी।
4: यस सर,
1: जरा उनसे बात कराइए मेरी।
4: सर यहाँ पे तो अभी कॉल पे सारी लड़कियाँ हैं, मुझे मालूम नहीं है किससे आपकी बात हुई है। मैं आपके
1: बात बताओ, आप लोग किसी को ऑफर देते हो तो आप साथ में गाली देते हो?
4: सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे गाली तो किसी ने इनको यहाँ देता नहीं है, ऐसा होता नहीं।
1: मेरे पास फोन आया है यहाँ से स्कीम के बारे में,
4: राइट सर,
1: जब मैंने उसको मना किया है तो उसने मेरे को गाली दी पलट कर।
4: सर
1: तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर?
4: आई एम सो सॉरी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से
1: मैं
4: बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों कहा गया है हमारे कस्टमर को। बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का फोन।
2: सर वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
1: पास है ना नंबर, इसी नंबर से फोन आया था।
2: यस सर,
1: गालियाँ दे जा रहा है यार वो।
2: सर कौन?
1: अरे यार मेरे को नाम नहीं पता उसका, मेरे को गालियाँ सुनाई जा रहा है।
2: सर मैं उनसे क्षमा, ऐसा सर होता नहीं है हमारे बैंक में कभी भी।
1: क्या
2: मैं...
1: नहीं होता यार?
2: नहीं सर, इस तरह की बात कभी नहीं हुई सर, आपके कहने से हम तो ये
1: फोन आ रहे हैं बराबर और मेरे को गालियां दे रहे हैं।
2: सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है सर, यही तो हमारी सर्विस है।
1: झूठ बोलेंगे तुम लोग,
2: ऐसी गलतियां आइंदा नहीं होगी। सर बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मुर्गा कहीं का।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये छोटा सा कॉल सेंटर मेरा ही है, ये सारी हरकतें मेरी हैं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार
4: तुम लोग ना सर पूरा मत मानिएगा, एक बार मेरे साथ सर हंस के बोल दीजिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
6: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and The Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
7: और मुशायद जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
8: बार बार,
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
8: 89.6
0: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: क्या आप इस बात से परेशान है कि आपका बच्चा आखिर ये माइनक्राफ्ट में खोया क्यों रहता है? तो अब आप इस बारे में जान जाएंगे। यस, मस्त मौला गौरव बात कर रहा है कतर कैलेंडर हाउस की, जिन्होंने इस साल एक और बड़ा इवेंट अनाउंस किया है, माइनक्राफ्ट एक्सपीरियंस विलेजर रेस्क्यू। यस,
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: वेल, बता दें कतर कैलेंडर हाउस ने कहा है कि इस साल जुलाई 28 से लेकर अगस्त 27 तक दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर के हॉल नंबर 5 में लगने जा रहा है माइनक्राफ्ट एक्सपीरियंस विलेजर रेस्क्यू का ये पूरा मेला, जहां पर आपको बच्चों के इस फेवरेट गेम के बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला है। यस, हॉल 5 एट डीसीसी, यहां पर होंगे वेरियस जोन्स जहां पर एडवेंचर से लेकर क्रिएटिव बिल्ड एरिया, सर्वाइविंग चैलेंज मिशन, इंटरैक्टिव गेम प्ले रूम्स एंड फैमिली और किड्स के लिए डिस्कवरी स्पेसेस, ये सब कुछ माइनक्राफ्ट टीम पर होगा। और हमारे और आपके बच्चे ये क्या खेलते हैं माइनक्राफ्ट में, इसकी थोड़ी बहुत भनक अब हमको लग जाएगी, क्योंकि बच्चों से जब भी मोबाइल लो ना, हमको तो ये समझ ही नहीं आता ये कौन सी दुनिया है। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, बच्चे हो सकता है इसी बारे में सब कुछ सच सच बताएं वो क्या खेलते हैं। वेल, पजल, मिशन, ये सब कुछ जो वो इस गेम में खेलते हैं वो यहां पर हमें रियल लाइफ में दिखने वाला है। तैयार हो जाइए माइनक्राफ्ट इंस्पायर्ड एक्टिविटीज को देखने के लिए जो हमारे कतर में होने जा रही है, एंड इसका इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि डेट के साथ साथ टाइमिंग और टिकट सारी अनाउंसमेंट अब आने वाले टाइम में कर दी जाएंगी। हालांकि सिर्फ डेट अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन अगर आपको टिकट्स लेनी है और टाइमिंग्स का पता करना है तो उसके लिए जल्द ही इसकी भी अनाउंसमेंट होगी। कान लगा के सुनते रहेगा मस्त मौला गौरव को। बच्चों, अब तुम्हारा गेम हो जाएगा एक्सपोज, हम लोग भी खेलेंगे अब तुम्हारे साथ बैठ के माइनक्राफ्ट। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मच्छीमार जी तो कार मच्छीमार बताइए। मछली जल की रानी होती है, लेकिन अगर हम उसका शिकार करते हैं तो हमें गाड़ी मिलती है, ऐसा कभी सुना है? नहीं ना, तो हम बताने जा रहे हैं। ओल्ड दोहा फोर्ट फिशिंग कंपटीशन थर्ड एडिशन बिल्कुल तैयार है, हमारे कतर में होने जा रहा है और इसकी तारीख आ गई है 13-16 मई। 13-16 मई ओल्ड दोहा पोर्ट में होने वाला है ये फिशिंग कंपटीशन, जहां पर बहुत सारे फिशिंग एंथुसियास्ट एक साथ आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। पिछले एडिशन की बात करें तो 132 टीम्स 578 पार्टिसिपेंट के साथ उतरी थी, लेकिन इस बार क्योंकि प्राइजेस बड़े हैं और इसमें मिल रही है आपको कार, जैसे कि फर्स्ट प्राइज जीतने वाली टीम को मिलेगी GWM की टैंक 500, सेकेंड प्राइज जीतने वाले को GWM टैंक 300, थर्ड प्राइज वाले को हेवल H9, एंड इसके अलावा और बात करें फोर्थ प्लेस विनर विल रिसीव अ बोट जो कि हलूल बोट फैक्ट्री से बनकर मिलेगी, एंड फिफ्थ टू टेंथ पोजीशन पर आने पर आपकी टीम को मिलेगा कैश प्राइज। ओल्ड दोहा पोर्ट पर ये एक बड़ा कॉम्पिटिशन होने जा रहा है एंड मुझे लगता है किंग फिश जीतने वाली टीम का वेट ऑफ द कैच डिटरमाइन किया जाएगा एंड वहीं पर कॉम्पिटिशन का दी एंड होगा 16 मई सैटरडे के दिन। आई एम श्योर ओल्ड दोहा पोर्ट का ये फिशिंग कॉम्पिटिशन आने वाले टाइम में कईयों के लिए करियर ऑप्शन बनकर उभरेगा। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 5th मई से 10th मई के बीच हो रही है दोहा मरीन स्पोर्ट्स क्लब में सुबह 9 से शाम 4 बजे के बीच। जाइए और अपना करियर बना लीजिए। हमें तो लगता है आने वाले टाइम में लोगों से जब पूछा जाएगा बेटा क्या करता है, बेटा ओल्ड दोहा पोर्ट में फिशिंग कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करता है और एक साल में गाड़ियां अपनी बना लेता है 3-4। 89.6 Virgin 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: लोगों की मेहमान नवाजी के लिए ना दिल बड़ा करना पड़ता है। पर कतर का दिल तो वैसे ही बड़ा है। एंड मस्त मौला गौरव, अभी आपको बता दें कि एक ऐसी चीज हुई हमारे कतर में जो आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। सो बात यह है कि कतर टूरिज्म एंड कतर फाउंडेशन फॉर सोशल वर्क ने मिलकर एक जबरदस्त MOU साइन किया है। ये MOU इंक्लूसिव टूरिज्म का है। Yes, हम आपको बता दें यहां पर ये लोग दोनों मिलकर लॉन्च कर रहे हैं एक पायलट प्रोडक्ट जिसका नाम रखा गया है ऑटिज्म फ्रेंडली स्पेसेस। इमेजिन कीजिए हमारे होटल्स और पब्लिक स्पेसेस को इस तरह से डिजाइन किया जाए जहां इंडिविजुअल्स ऑन दी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जिनको थोड़ा सा ऑटिज्म वाला साइन है उनकी फैमिलीज बिना किसी स्ट्रेस के बिल्कुल कंफर्टेबल होकर अपना टाइम एंजॉय कर सके ऐसी स्पेस बनाई जाए। और अब इस पर काम हो रहा है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे टूरिज्म सेक्टर के वर्कर्स को भी इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो हर गेस्ट की डाइवर्स नीड्स को समझ सके। और स्पेशली अगर वो ऑटिज्म वाले स्पेक्ट्रम से है तो उनकी फैमिलीज को बिना किसी दिक्कत के बेहतरीन ट्रेवल एक्सपीरियंस मिल सके, क्योंकि मेरा ये मानना है ट्रेवल पर हक सबका है और कतर भी इसी बात पर यकीन करता है। वेल, ओमर अल जाबर एंड द एंटायर टीम जिन्होंने ये पूरा डिजाइन किया, सस्टेनेबल एंड थॉटफुल इनिशिएटिव, एंड मैं इतना ही कहूंगा ये एक जबरदस्त वेलकम इनिशिएटिव है एंड पूरी दुनिया इसकी तारीफ करेगी। एंड मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, हम भी जब कभी ऐसी किसी फैमिली में किसी को देखें तो उनकी हेल्प जरूर करने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कतर के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर यहां रहने वाला हर रेसिडेंट और सिटीजन भी तो है। हमारा भी फर्ज बनता है जब भी कोई टूरिस्ट को मदद चाहिए हम उसे जरूर पहुंचाएं, और ऐसे ही कतर का टूरिज्म बड़ा बनेगा। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अमिताभ बच्चन जी, क्या आपके ग्रैंड किड्स आपके पास में आके कहते हैं कि हमें ये वाली गेम खिलाओ या ये वाली गेम सिखाओ?
3: मैं कहता हूँ उनसे कि बल्कि हमको सिखाओ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है वो जो खेलते हैं, और जिस गति से वो लोग खेलते हैं हम लोग उसको कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार उनके साथ, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो तो आजकल फुटबॉल का गेम भी चल पड़ा है, उसमें खेलते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं।
2: क्या आपके ग्रैंड किड्स को अमिताभ बच्चन जी कोई आइडिया है कि वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अजूबा से, शहंशाह से, सरकार से, इन शॉर्ट हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
5: भट्ट,
6: अरे भट्ट हूँ।
5: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है।
6: खट खट हू दैट,
7: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: Tirchi helpline.
1: Hi there. What's up? Tell me.
0: मुझे मेरी जॉब के लिए रोज 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है. थक जाता हूँ. क्या करूँ?
1: Oh man, ये तो बहुत टायरिंग है. तू कैब चलाना छोड़ दे भाई and do some other job.
2: मस्त जोक मारा रे. ये हंस रहे हल्का हंस.

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi sun raha bandi ka naam hai RJ Kanika. It's time for the hottest pop music of the week. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi jahan hafte ke top 10 hottest pop gaanon ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao, mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की. गाना नंबर 10 पर इस गुरु रंधावा का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज. गाने का नाम है वोग. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे गिर के वोग इस हफ्ते ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद शुभ का नया नवेला गाना मूव्स इस हफ्ते डेब्यू मार के ऑन गाना नंबर 9. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: Number 10.

0: गुरु रंधा की आवाज में एक गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। मैं गुरु रंधावा का गाना सुनती हूँ, सुन के तो मुझे पता है इट्स अ गुरु सॉन्ग, पर अक्सर नाम नहीं याद रहता, बिकॉज मोस्टली गाने मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं से उसका एक इंस्ट्रूमेंटल या इंट्रो म्यूजिक भी सुन लें तो पूरा गाना याद आ जाता है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bindi ka naam hai RJ Kareka. Instagram par jao, mujhe follow karo. Follow karna ekdam free hai. Mujhe pata hai aap phone hi chala rahe the apna. @RJKareka on Instagram par aake quickly say hello. Koi gana share karna ho bindaas aake hit me up. कभी ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रेडियो पे कोई गाना बस शुरू हुआ है, इंट्रो म्यूजिक प्ले हुआ है एंड आपने एकदम बता दिया कि अरे दिस इज दिस सॉन्ग, एकदम फुल ऐसे सुप्रीम फीलिंग आती है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं ज्यादा कल्चरली रिच हूँ, मैं ज्यादा अच्छा म्यूजिक जानती हूँ तुमसे, बहुत सही फीलिंग होती है, शाबाश, पैट ऑन योर बैक। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो इंट्रो म्यूजिक बजता है आपको नहीं, गाड़ी में चारों दोस्तों को गाना याद आ जाता है, बिकॉज वो गाना, वो इंट्रो म्यूजिक इतना आइकॉनिक होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था कौन से वाला गाना है। प्लेइंग इट राइट अगेन फॉर यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे राइट आंसर्स आएंगे, बिकॉज ये गाना एक साल पुराना भी नहीं है। गाने का नाम है अर्ज किया है बाय अनूप जैन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे आगे ये गाना आने वाला है, कौन से नंबर पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा, पर जितना पॉपुलर ये गाना हो चुका है उतना ही सिनोनिमस ये इंट्रो पीस हो गया है। @RJKareka ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं एक और गाने का इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है। जल्दी जल्दी आके @RJKareka और इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो गाना, गाने के विजुअल्स, वीडियो सब आ गया है। शो में आगे चल के ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

0: ट्रेंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोलिए
4: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रोफाइल देखा था क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद आ गया है, चाह रहे थे थोड़ा सा आपके बारे में पूछना। आप मेरे को अपनी थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, एज बता देंगे कितनी एज है आपकी?
3: प्रोफाइल में लिखी हुई है, आपने देखी नहीं? 25 साल है।
4: अच्छा वही मैं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। रेखा बता देंगे आप ये कितनी पढ़ी लिखी है? आप थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना?
3: मैंने बीए किया है।
4: अच्छा रेखा, आप इसको माइंड मत करना क्योंकि लड़के ने आपको पसंद कर लिया है और मैं चाहता रहा था आपके पापा से बात करना, बल्कि लड़के के पापा भी आपको चाह रहे थे आपसे मिलना। प्लीज माइंड मत करना, आपके कोई टांग में तो चोट नहीं लगी? प्लीज इसको नहीं, मैं ऐसी है पूछा था। अच्छा मेरे को रेखा एक चीज बता दीजिए, आप हील वील तो ज्यादा नहीं पहनती ना?
3: लेकिन क्यों हील नहीं? तो आपको पूछना क्या है बताइए।
4: मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हील पहनती है क्या आप? नहीं पहनती? मैं
3: हील तो कभी पहनते भी हैं कभी नहीं भी पहनते, लेकिन
4: ज्यादातर आप नहीं पहनते हैं।
3: हाँ ज्यादातर नहीं।
4: हाँ ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये भाग के शादी करना चाहता है तो मैं यही देख रहा था कि आपके कोई टांग में चोट तो नहीं है, कहीं हील वील तो नहीं पहनती, कहीं भागने में परेशानी हो जाए। तो इस लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे।
3: क्या बात कर रहे हैं आप? ये
4: नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस लड़के के माँ बाप आएंगे, ये थोड़ा सा दौड़ा के देखेंगे। अगर आप भाग के शादी कर सकती हैं तो ही वो करेंगे ना, लड़के की बड़ी ख्वाहिश है। बल्कि इसके माँ बाप ये कहते हैं, हमारे चार लड़के थे सबने ऐसी कर लिया, हम चौथी शादी लड़के की करते हैं, हम वो लड़के भगा के करना चाहते हैं।
3: कर रहे हैं मेरी बात सुनिए
4: दोबारा, एक कमाल है अभी से भाग गई यार।
3: हेलो
4: देखा आपने फोन काट दिया यार, आप हील नहीं पहनती, आपके टांग में चोट लगी, भागने में प्रॉब्लम क्या
3: है?
4: मैं दोबारा फोन मैं आप ही को तो करूंगा, लड़के ने आपको पसंद कर लिया, लड़के
3: नहीं बकवास।
4: अच्छा तो फोन मत काटिएगा, फोन मत करिए, मेरी बात सुनिए। रेखा
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं आपकी शादी नहीं करा रहा, आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप मुर्गा बन गई हैं, और प्लीज गुस्सा नहीं और फोन मत काटना यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मेरी शादी के बाद मेरे डैडी से ही करिएगा।
5: नहीं मैं उनसे जरूर कर लूंगा, लेकिन डैडी से तो नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप प्लीज बोल दीजिए।
3: नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी।
5: मेरी बात सुनिए, आप अगर कुकड़ू को बोल देंगे मैं आपकी शादी करा दूंगा, जल्दी से करा दीजिए, मेरा मतलब जल्दी से बोल दीजिए।
3: कुकड़ू को
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
7: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and The Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
8: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
9: जबरदस्त ट्रैक्स,
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
0: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट। गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
9: नंबर 6।

0: पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम गया है ये गाना. गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज अलॉन्ग विद कुटले खां एंड रैबिटोर. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले संजू राठौड़ का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक. लेकिन म्यूजिक की बात पता है क्या होती है, इट मेक्स यू ट्रैवल इन टाइम. कोई भी धुन कभी भी हमको जिंदगी के किसी किस्से में ले जाती है. लाइफ की मेमोरीज की जो बुक लिखी हुई है हमने, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कभी भी खुल जाता है. अभी रिसेंटली एक वीकेंड पे मेरे साथ ऐसा हुआ. मैं कैफे में थी, थोड़ी कॉफी पी रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वाइब, सेल्फी खींच रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट, एंड एक गाना चलता है उस कैफे में. वो गाना सुनते ही मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के चैप्टर नंबर 2019 में जा पहुंची. वो गाना मेरे को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करके इसी स्टूडियो में लेकर आया जहां मैंने वो गाना आपके लिए सबसे पहले प्ले किया था.
2: वास्ते जा भी दूं, मैं गवाही मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं.
0: गाने का नाम है वास्ते, ध्वनि भानुशाली, निखिल डिसूजा का गाना. एंड ऑनेस्टली मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे एंड टू एंड इस गाने के लिरिक्स याद रहेंगे, बट आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद एक दो लोग जो मेरे राइट वाली टेबल, लेफ्ट वाली टेबल पे बैठे थे, एंड वो भी इस गाने के साथ लिपसिंग कर रहे थे. एंड आई रियलाइज दैट सम सॉन्ग्स हैव एन इम्पैक्ट जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो. आई रिमेंबर 2019 में दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर. इनफैक्ट गाना इंडी टॉप 10 का बेस्ट ऑफ 2019 में वास्ते वॉज नंबर 1 सॉन्ग. इस गाने ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए. ये पहला ऐसा नॉन फिल्म गाना था जिसने YouTube पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए. उसके बाद कई गानों के साथ ऐसा हुआ, बट आई हैव टू रिमाइंड यू दैट इस गाने ने वो इफेक्ट क्रिएट किया जो एक फिल्म का गाना करता है. जहां इट डजंट मैटर कि ये गाना कौन सी फिल्म पे है, किस पे दर्शाया है, अगर कभी आपने सुना तो मेरे जैसे उस कैफे में बैठे बैठे आप एक गाना गाना शुरू कर देते हैं. तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन, ध्वनि भानुशाली की आवाज, लेकिन इस गाने के स्टार है निखिल डिसूजा. ट्रस्ट मी, ये गाना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सुना है, पर कुछ तो बात है, ये गाना रेडियो पे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत साउंड करता है. दिस इज वास्ते प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Indie Top 10. Kanika Kasat on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फन लैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो, सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
6: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
7: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
8: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
7: अभी कॉल करें 3100-0813।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Diljit Dosanjh, the man you are, and what a collaboration with Sia. Gaane ka naam hai Ranjha. Pichle hafte se ek nahi, do nahi, teen nahi, char bhi nahi bro. Pure 6 position super jump kar Ranjha was this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10.
2: Gaana Indie Top 10.
3: Kanika ke saath. On Mirchi.
0: Mirchi sun rahe aap. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. And this show is all about the hottest pop music of the week. वो कहते हैं हर गाना अपना लिस्टनर ढूंढ लेता है, पर पता नहीं कुछ गाने हमको रात को ही ज्यादा अच्छे क्यों साउंड करते हैं. लाइक रियली थिंक अबाउट इट, देयर आर सम सॉन्ग्स जो आपने दिन में 2-3 बजे सुना तो ठीक है, यू विल गिव इट लाइक अ 6/10. वही गाना 2 AM पे हिट्स राइट इन द फील्स, दिल के सारे इमोशंस उमड़ जाते हैं. और ऐसा ही एक गाना मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, उसका नाम है जुल्फे बाय साहिल. दो बड़ी टॉर्चेस के साथ इस गाने पर हम एक स्पॉटलाइट मारना चाहते हैं, बिकॉज ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट. साहिल ने अपनी जर्नी बहुत सारे आर्टिस्ट की तरह कवर्स गाकर ही शुरू करी थी, मैशअप्स गाई, वहीं से अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू किया. एंड धीरे धीरे जब लोग उन्हें ट्रस्ट करने लगे, उनके म्यूजिक के साथ जुड़ना शुरू करे, उन्होंने अपना ओरिजिनल म्यूजिक अपने फैंस के साथ शेयर किया. एंड फैंस ने कस के प्यार दिया, बहुत ओपन रहे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एंड दे केप्ट आस्किंग फॉर मोर न्यू सॉन्ग्स. उन्हीं में से एक गाना है जुल्फे. इट्स अ प्रॉपर लेट नाइट कन्फेशनल सॉन्ग, ऐसा मोमेंट जब आप किसी को कॉल नहीं करते हैं लेकिन उनके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाते हैं. रियलिटी इमेजिनेशन के बीच का जो स्पेस है, जिसको मे बी आप ओवर थिंकिंग कहते हैं, बट उसका भी अपना मजा है. इट्स क्वाइट R&B सॉन्ग, वेरी इंटीमेट, वल्नरेबल है, दैट साहिल की स्पेशलिटी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आज की हमारी गाना स्पॉटलाइट में दिस इज जुल्फे बाय साहिल, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: साहिल की आवाज में दैट वॉज जुल्फे फॉर ऑल द लेट नाइट थिंकर्स. अगर आप थोड़ा ओवर थिंक करते हैं ये गाने को बैकग्राउंड में लगाकर करना एटलीस्ट बेटर रहेगा. एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ अपने 2 AM वाली प्लेलिस्ट शेयर करो. आई माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना इज मेरा आपका सबका 2 AM 2 PM 3 PM 5 PM सॉन्ग. ये गाना 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है अनूप जैन की आवाज में. गाने का नाम है अर्ज किया है. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अजय देवगन, फर्ज करते हैं आप माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं. देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर इज केआरके, देयर इज करण जौहर एंड देयर इज काजोल. दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे.
4: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
3: बिकॉज दैट्स द गेम. हमको दो लोगों को तो बचाने ही पड़े.
4: मुझे बचाने नहीं है. आई ब्रेक द रूल. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ.
3: ऐसा ही हूँ
4: मैं. हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं.
3: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल. बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल.
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
6: Cut, cut.
7: Who that?
6: Jassi.
7: Jassi? Kaun si wali Jassi?
6: Jassi who has come, aunty ji?
7: Cut, cut. Who that?
8: Only on 89.6 Mirchi 1.
9: Mirchi.
8: It's hot.
0: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath. On Mirchi.

0: गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको ये गाना बहुत पसंद है। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम किया है करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: यू आर लिस्निंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है तू बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। सोनू निगम का नाम ही काफी है, ही इज अ फुल रेंज म्यूजिशियन। जितने पॉपुलर सोनू निगम एज अ हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं, उतने ही पॉपुलर वो एज अ पॉप स्टार भी हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, इंडिया में पॉप स्टार्स कब बने? मतलब गाने बहुत बड़े हो जाते थे, पर उन गानों को हम वो गाना किस मूवी में आया है या उस गाने में कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है उससे याद रखते थे। देन केम अ वेव ऑफ आर्टिस्ट अर्ली 90s, लेट 90s में ये पॉप स्टार्स जैसे कि सोनू निगम, शान, लकी अली, जिन्होंने इंडियन इंडी पॉप म्यूजिक को आगे बढ़ाया, जिनके गानों की म्यूजिक वीडियो में कोई बड़ी फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि आर्टिस्ट खुद फीचर होते थे, एंड सोनू निगम वाज द पोस्टर बॉय ऑफ दैट चेंज। अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना शुरू किया उन्होंने। ऑल्दो वो बहुत बड़ी फिल्मों के लिए ऑलरेडी प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक को भी उतना ही स्पेस एंड अटेंशन दी, एंड उस फेस का ये सबसे मस्ती भरा गाना है। The song is young, very peppy, एक flirtatious energy है, and किसी movie का scene बनने की जरूरत नहीं थी, because in its own इस गाने ने अपनी एक cinematic दुनिया बनाई। इस गाने में सोनू निगम के साथ बिपाशा बासु is the featuring actor. It was a youth favorite back then, it is till now, तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए। सोनू निगम की आवाज में the forever iconic गाने का नाम है तू, it's playing right next for you on our cassette classic this week. बंदी का नाम है कनका, enjoy.

यार ये गाना सुनते हुए लगता है कि टोपी पहनो और उस टोपी को उल्टा कर दूं. समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग विच जस्ट सर्व्स स्वैग. सोनू निगम की आवाज में दैट वॉज टू ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एल्बम का नाम है किस्मत, म्यूजिक है बिडू का एंड लिरिक्स हैं देव कोहली के. आई कांट बिलीव अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्वैग वर्ड यूज किया बिकॉज मुझे क्रिंज होता है उस वर्ड से. सो टू मेक माई सेल्फ फॉरगिव दैट एंड फॉर यू टू फॉरगिव मी, सीधा बढ़ते हैं इस हफ्ते के न्यूमेरो उनो गाने की टूवर्ड्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार ये गाना हिस्ट्री बना रहा है. गाने का नाम है बैरन बाय दिस सुपर टैलेंटेड म्यूजिकल एक्ट कॉल्ड बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. थर्ड टाइम इन अ रो बैरन इज ऑन गाना नंबर 1 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय. नंबर 1.

0: Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: मेरी आवाज बैठ गई है, मैं क्या करूं?
2: अरे तू आवाज को अपना कंफर्म टिकट दिखाओ, उसको बोलो खड़ी हो जाए।
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: हर हफ्ते मैं यहां आता हूं 20 गाने आप और ये काउंटडाउन। लेकिन आज एक बात कहनी है पहले। बॉलीवुड में बहुत शोर है, बहुत चमक, बहुत पीआर, बहुत नॉइज, और उस शोर में कुछ गाने होते हैं जो सच में फील किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिए गए हैं। वो गाने अलग सुनाई देते हैं हमेशा। आज का शो उन गानों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया, बस काम किया और वो काम आप तक पहुंचा इस काउंटडाउन के जरिए, मेरे जरिए। Hi, I'm Suren Sundaram and this is the Mirchi Top 20, India ka sabse definitive Hindi music countdown. Aur main aapko wo sab sunaunga jo deserve karta hai suna jana. Number 20 se number 1 tak. To shuru karte hain with gana number 20, Ranveer Singh, Dhurandhar, Ishq Jalakar.
0: Number 20.

और फिर नंबर 19 पर एक डेब्यू सॉन्ग आदित्य रिखारी और साथ में है श्रेया घोषाल जो 2026 में बिल्कुल एक जेंजी सिंगर की तरह सुनाई दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। क्लियरली चीटिंग इज कूल। नंबर 19।

0: ये था क्या कमाल है नंबर 18 इस हफ्ते। एआर रहमान का म्यूजिक, इरशाद कामिल के अल्फाज और दिलजीत की आवाज। और इन गानों के बावजूद लोग कहते हैं नहीं यार, पुराने गाने ही अच्छे होते थे। मैं हूं सुरेन और आज मैं उस डिबेट को सीधा खत्म करना चाहता हूं। इरशाद कामिल, जिनसे ये बात मैंने खुद पूछी, उनका जवाब सुनिए।
1: Actually, I don't miss anything in today's song. क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है। और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे, और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं। और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुंचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। So I don't think I don't miss anything।
0: इरशाद भाई ने जो कहा वो सिर्फ सच नहीं है, वो अनकंफर्टेबल सच है। हम 250 गाने सुनते हैं लेकिन बाकी के 50,000 का क्या? वो दब गए, they were forgotten। इसलिए पुराना जमाना परफेक्ट लगता है क्योंकि उसके बेकार गाने इतिहास ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। आज का म्यूजिक वीक नहीं है, आज का म्यूजिक बहुत ज्यादा है। एंड उसमें से भी एक चन्ना मेरेया है, एक सैयारा है, और ये वाला गाना भी है, क्या कमाल है। ये गाने अगर 1975 में आते तो आज हम इन्हें क्लासिक सॉन्ग्स कहते। मेरे लिए आज का पिक ऑफ द वीक भी इरशाद कामिल का ही है। रहमान साहब का म्यूजिक, इरशाद भाई ने क्या कमाल लिखा है, एक गाना जो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका है, संग बाय मोहित चौहान। दिस इज तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। पिक ऑफ द वीक।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: हेलो,
2: उसको पेरों को पीछे लगा के उसको स्टीम को आगे करो।
3: हेलो,
1: हाँ जी,
3: ये भाई साहब, ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
1: कौन सी गाड़ी आपकी?
3: पेरो है, स्टीम है, एक सेकंड आप होल्ड करें।
2: अरे आ गई क्या? तो रात उठाइए वहाँ से, वो अब तक नहीं पहुँची।
4: उसका
2: फोन आया मेरे पास, रात उठाइए गाजियाबाद से उसने। दोनों आगे।
3: हेलो रोहित जी, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का?
4: बताइए कैसे बताऊँ मैं, हिसाब किताब बताओ, कौन सी गाड़ी आपकी?
3: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं चेक नहीं दे पाऊंगा, मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
4: ठीक है,
3: ठीक है। इसमें मेरी अभी तो आप तो लिखिए एक
4: मॉडल,
3: मॉडल आप लिख लो इसका। एक सेकंड, आराम प्रकार से गाजियाबाद से उठाइए, क्या मॉडल है उसका?
4: 2000।
3: यार रोहित, एक तो ये है कि ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह, और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं, 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो, किस तरह गाड़ी इंश्योर कर दो, ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं, बस बेच के फिर मेरा स्यापा खत्म, मैं नहीं जानता कहां की गाड़ी थी कुछ था।
4: हेलो,
3: हाँ जी, कौन बोल रहे भाई साहब?
4: अजय शर्मा।
3: अजय जी, एस एम, मेरे पास 28 गाड़ियाँ हैं इस वक्त।
4: अच्छा, आपकी अपनी है?
3: अब उसको आपको क्या लेना है यार, मेरी अपनी
4: नहीं, उसी
3: मैं आपको बताता हूँ, 3 गाड़ियाँ गाजियाबाद से उठाई हैं।
4: अच्छा।
3: 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं, बाकी सारी दिल्ली की हैं।
4: चोरी की है क्या?
3: हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
4: पहले मुझे देखना पड़ेगा आप कैसी बातें कर रहे हैं।
3: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो, आप मैं
4: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
3: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा?
4: बात करूंगा ना आपसे।
3: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
4: अरे सर, ऐसा काम नहीं है मेरा ना।
3: आप नंबर लिख लेना, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो, एक सेकंड रुके।
2: हाँ, अरे तो ना बिक रही तो गाड़ी को काट देना, उसके पार्ट्स बेच दे।
3: हाँ जी भाई, तो आप ये कर दोगे ना पूरे?
4: शाम को बताता
3: हूं। नहीं, आप वैसे कर दोगे ना पूरे?
4: क्या कर रहा हूं मैं, शाम को फोन करके बताऊंगा।
3: अजय जी, ऐसा है, ये जितनी गाड़ियां है ना, ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा।
4: तो आपको देखना चाह रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
7: How's the Josh?
8: Hi sir!
7: How's the Josh?
8: Hi sir!
9: Oh boy, Josh hai full high. Aur volume bhi, kyunki aa rahe hain Bollywood ke best tracks back to back.
10: Back to back.
11: Qatar ka number one radio station.
12: 89.6
13: FM, Mirchi 1. It's hot.
14: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
15: Number 17.

जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलर्स, मैन शी इज अनरेप्लिकेबल, वो सिर्फ वो है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक अलग बात करना चाहता हूँ, म्यूजिक के बारे में, पर्सनल म्यूजिक के बारे में। जब भी आप कोई गाना सुनते हैं, एक मोमेंट आता है उस गाने में, एक छोटा सा मोमेंट जो सडनली आपका हो जाता है। देखो सबका अलग होता है और वही तो मैजिक है। जैसे दीवानियत को ही ले लो, दुनिया उस कोरस पर दीवानी है, वो मल्टी वॉइस बिल्ड, वो सब जानते हैं, सब गाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो गाना शुरू होते ही खत्म हो जाता है, पहले पल में, पहली आवाज में। जो

ये यही विशाल की ये सॉफ्ट ऑलमोस्ट हेजिटेंट आवाज जैसे किसी दर्द को संभाल के रखा हो, वहां नहीं जाता जहां सब जाते हैं, सीधा अंदर पहुंचता है। और तब मुझे समझा कि गानों में सबका दरवाजा अलग होता है। ठीक चन्ना मेरे यार, अब ये तो एक अलग ही चैप्टर है। अरिजीत सिंह का वो हुक, इट्स अ क्लासिक, इट्स इमॉर्टल, सब जानते हैं। लेकिन जब वो गाना खत्म होने लगता है, जब बाकी सब ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होते हैं, मैं वहां रुक जाता हूँ।

ये रिपीट, ये बार बार कहना, जैसे कोई जाने से पहले एक बार और मुड़ के देख रहा हो। और फिर कुछ दिन पहले एक नया गाना आया और उसने वही किया जो विशाल की आवाज ने किया था, जो अरिजीत के उस आउट्रो ने किया था। एक स्पेसिफिक मोमेंट, एक स्पेसिफिक फीलिंग ऐसी जो मुझे लगा कि यार मैं तो यहां पहले भी आ चुका हूं, इस दर्द को मैं पहले भी महसूस कर चुका हूं।

ये वाला हिस्सा, बस ये वाला जो सडनली एक टाइम मशीन बन जाती है। और आज ये गाना पहली बार इस काउंटडाउन पे आ रहा है, नंबर 15 पे, फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज एतबार। सुनिए, पूरा सुनिए और ढूंढिए वो एक हिस्सा जो सिर्फ आपका होगा। नंबर

0: प्रेम के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची इट्स हॉट
6: अर्ज किया है
7: इरशाद इरशाद।

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
6: नंबर 12।

धुरंधर रॉकिंग द काउंटडाउन दिस वीक ऑन नंबर 14 एंड रणवीर के साथ यू गॉट सारा अर्जुन, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नाम, लेकिन उससे भी ज्यादा एक प्रॉमिसिंग एक्टर। और इस नाम ने मुझे याद दिलाई एक और सारा की, सारा अली खान। 2018 केदारनाथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक डेब्यू हुआ जिसे पूरी इंडस्ट्री ने नोटिस किया। मैंने भी उन्हें नोटिस किया और उस फिल्म के बाद आई जेन्युइनली बिकेम अ फैन ऑफ सारा अली खान। लेकिन 2026 में पिक्चर क्या है? देयर इज अनन्या पांडे, सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, देयर इज जानवी कपूर, सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, एंड देन देयर इज सारा अली खान। पति पत्नी और वो दो में शी इज वन ऑफ द टू अफेयर्स। तीन लड़कियां, एक ही दरवाजा, तीन अलग अलग मंजिलें। और इस हफ्ते नंबर 13 पे एक गाना है कॉल्ड आवारा अंगारा फ्रॉम तेरे इश्क में। कृति सैनन का ये गाना है जो इस जेनरेशन की सबसे कमिटेड एक्ट्रेसेस में से एक है। ये सब देख के दिल में एक सवाल उठता है यार कि सारा, वो केदारनाथ में दिखने वाली जो कमाल की टैलेंट थी, आखिर वो गई कहां? मैं आज भी मानता हूं वो टैलेंट अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। लेकिन टैलेंट अकेला काफी नहीं होता, परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं, चॉइसेस चाहिए होती हैं, एक कमबैक चाहिए होता है जो सिर्फ स्क्रीन पे ना। और उस कमबैक की याद, वो पहली बार, वो केदारनाथ वाली सारा अली खान। ये है इस हफ्ते का रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, जानेसार बाय अमित त्रिवेदी। टॉप 20 रिवाइंड।

0: Sahil ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स
4: हो गया,
5: अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
6: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
7: Cut, cut.
8: Who that?
7: Zahir.
8: Zahir. Zahir who?
7: Zahir si baat hai. Main hoon. Aur koi nahi.
8: Cut, cut. Who that?
9: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
10: Number 12.

पति पत्नी और वो दो से रूप दी रानी अपने दूसरे हफ्ते में है यूर ऑन नंबर 12 एक फिल्म चीटिंग के बारे में ग्लैमरसली हैप्पीली एंड कॉमिकली। हाय मैं हूँ सुरेंद्र सुंदरम और अभी जो आने वाला है नंबर 11 पे वो भी उसी दुनिया से है जवानी तो इश्क होना है। गाने का नाम है ब्याह करवा दो जी, ग्लॉसी कैची एंड इक्वली फॉरगेटेबल। और मैं जानता हूँ 2 महीने बाद ये गाना कोई नहीं सुनेगा। कैन आई बी ऑनेस्ट हियर, यार मैं थक गया हूँ। बीवी नंबर 1, नो एंट्री, दे दे प्यार दे, मर्डर, गहराइयां, कभी अलविदा ना कहना, और अब ये एक ही कहानी बार बार, अलग चेहरे अलग गाने लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला। और सच ये है कि हम और मैं भी इस हम में शामिल हूं, हम अपने ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं। हम सोचते हैं कि ऑडियंस कॉम्प्लेक्स स्टोरीज नहीं चाहती, उन्हें चाहिए सिर्फ चमक, उन्हें चाहिए सिर्फ शोर। वो लिसनर जो कानपुर में बैठा हुआ है, वो लिसनर जो दुबई में है, वो उतनी ही गहराई मांगता है जितनी कोई मांग सकता है, लेकिन हम उन्हें देते हैं क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है कॉम्प्लेक्स लिखने की, कॉम्प्लेक्स दिखाने की, कॉम्प्लेक्स फील करने की। और जब कहानी में गहराई नहीं होती तो गाने में भी नहीं होती, इसलिए सैयारा जैसा गाना एक याद बन जाएगी मगर व्याह करवा दो जी नहीं बन पाएगी। फर्क सिर्फ फिल्ममेकर्स की गट्सी चॉइसेस का होता है और अभी वो गट्स कहाँ हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा काम है हर हफ्ते इस स्टूडियो में आपके लिए बेस्ट गाने ढूंढना उस शोर में से। और इस हफ्ते नंबर 11 पे है ये व्याह करवा दो जी, तुम है जवानी तो इश्क होना है।

0: Train ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: सर बाइक चलाते चलाते मच्छर मुंह में चले जाते, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या करूं?
2: अरे गोचू, जब तेरे को पता ही है मच्छर सामने से आ रहा है तो तू रॉन्ग साइड क्यों चला रहा है?
3: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।
0: 89.6, 89.6,
4: it's hot.

यार ये गाना चांद मेरा दिल जैसे ही चलता है मेरे दिमाग में एक और ही गाना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी वही गाना चल रहा होता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते और शायद कुछ करना भी नहीं चाहते। क्या

है कि ऋषि कपूर साहब की वो फिल्म हम किसी से कम नहीं, वो गाना, वो फीलिंग, इट फील्स सो फ्रेश इवन नाउ। और यही तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कोई नहीं बोलता। हमारे सबसे बड़े फिल्म मेकर्स, हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार्स, वो भी उसी फीलिंग के पीछे भाग रहे हैं, इंक्लूडिंग ए सन रणबीर कपूर, क्योंकि पापा की विरासत मिली जीन्स में, सरनेम में, लेकिन पहली बड़ी फिल्म के लिए उन्होंने सीधा पापा का गाना ले लिया।

0: औरों से जुदा।
1: बचना है हसीनो, पूरी एक जेनरेशन नाच रही थी और उन्हें खबर तक नहीं हुई कि ये तो उनके अंकल ऋषि कपूर का गाना है। एंड देन यू गॉट शाहरुख खान, जिन्होंने किया वही काम जो सिर्फ शाहरुख खान कर सकते हैं। उन्होंने ऋषि सर का एक और गाना लिया और उस पर एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी।

0: ओम शांति ओम 2007 अ ब्लॉकबस्टर, एक गाना जो लगभग 50 साल पहले लिखा गया था पर शाहरुख ने उसे इमॉर्टल बना दिया। ऋषि कपूर इजंट विद अस एनीमोर, मगर बॉलीवुड उन्हें कभी भूलने नहीं देगा एंड आई लव देम फॉर इट, इट विल कीप हिम अलाइव। लेकिन ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ खत्म नहीं होती। नंबर 9 पर इस हफ्ते है सैयारा, जिसका दिल मोहित चौहान की उस आवाज में धड़कता है जो एक था टाइगर में सुनाई दिया था। पुरानी रू नया टेक, हमेशा से हमेशा तक। दिस इज सैयारा बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 9।
1: नंबर 9।
2: तू

0: Surin ke saath only on Mirchi. It's hot. Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga.
1: Mirchi murga. हेलो
2: हेलो मनोज जी।
1: हाँ जी
2: सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपने गाड़ी दी थी ना सर्विस के लिए
1: जीती
2: है। हाँ सर, सर नहीं सर, वो अभी तो ठीक नहीं हुई है सर। मेरी बात हो गई है, 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है ये।
1: 40,000 रुपए?
2: हाँ सर, वो मेरी कबाड़ी वाले से बात हुई है, 40,000 रुपए दे रहा है सर वो, और मना लिया उसे।
1: कोई तीसरी सर्विस है? किस चीज के कबाड़ी?
2: नहीं तीसरी सर्विस है, मेरे को मालूम है। आप ये आप देखे है ना गाड़ी, ये सर्विस के लिए हमको दी थी ना आपने, तो उसकी बात हो गई है। 40,000 रुपए देने को तैयार है कबाड़ी वाला।
1: कबाड़ी वाला मतलब किस चीज के देने के लिए तैयार है? गाड़ी नई है, सर्विस तीसरी हो रही है।
2: नहीं सर,
1: शॉप में दी है कबाड़ी वाला, समझ नहीं आ रही मेरे।
2: मैं समझाता हूँ सर। आपकी जो गाड़ी थी ना
1: जी,
2: उसकी नॉर्मल सर्विस हो गई थी।
1: हाँ?
2: बढ़िया चकाचक हो गई थी सर। हमारा जो ये मैकेनिक है ना छोटू, ये टेस्ट ड्राइव पे ले गया था उसको। अच्छा, जब ये गया है ना, तो ये जो रेल की पटरी आगे पड़ती है ना हमारे वर्कशॉप से, रेलवे पटरी पे इसकी गाड़ी, इसने गाड़ी बंद कर दी सर पटरी पे।
1: अच्छा,
2: इस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं सर, वहाँ से ट्रेन आ रही थी सर, आपकी गाड़ी के परखचे उड़ा दिए उसने। अब मैं तो उसको चपेट मारी है, रो भी रहा है बैठ के। तो वो कबाड़ी वाले को दिखाया, जो सारा तो सामान बिखर गया है, जो बचा है उसके 40,000 दे रहा है।
1: पागल हो गया है तू क्या?
2: सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 40,000
1: रखा तू नहीं चाची, बकवास कर जा रहा है
2: सर। ट्रेन की पटरी में अटक गई, हम क्या कर सकते
1: हैं? पटरी ठेका ले रखा है ट्रेन की पटरी।
2: मैं
1: आपको बात सी बात नहीं है मेरी, सुन। तो कोर्ट से लेकर सब सबको अंदर कर दूंगा, बंगला वो गैराज पर आज छोटी जाएंगे ट्राई लेने। रोटी का काम क्या है? गाड़ी ड्राइव करेगा? अच्छा
2: सर, सर सर इतना गुस्सा नहीं मनोज जी, इतना गुस्सा
1: नहीं।
2: सर पहली बार मेरी हालत बुरी हुई है मनोज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड।
1: सर सर सर
2: सर सर, आपकी गाड़ी सही सलामत वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दी थी। एक मजाक चल रहा था, मैं रेडियो में चीज़ नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बन गया है आपका
1: सर, थोड़ा
2: सा
1: मिल गया।
2: मेरे साथ हंस के बोल दीजिए आप।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
3: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: नंबर 7।
7: Say whoa!

0: ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है? धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दा ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज जेम्स विद भीगी भीगी।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
12: Number 5.

तेईस हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता, बस यूट्यूब पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे, दैट्स इट, दैट्स हिज सब्सक्राइबर काउंट। लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। द सॉन्ग इज इन सॉफ्ट, इट्स नॉट जेंटल, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अमिताभ बच्चन जी, क्या आपके ग्रैंड किड्स आपके पास में आके कहते हैं कि हमें ये वाली गेम खिलाओ या ये वाली गेम सिखाओ?
4: मैं कहता हूँ उनसे कि बल्कि हमको सिखाओ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है वो जो खेलते हैं, और जिस गति से वो लोग खेलते हैं हम लोग उसको कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार उनके साथ, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो तो आजकल फुटबॉल का गेम भी चल पड़ा है, उस पे खेलते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं।
3: क्या आपके ग्रैंड किड्स को अमिताभ बच्चन जी कोई आइडिया है कि वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अजूबा से, शहंशाह से, सरकार से, इन शॉर्ट हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट अगर कर
6: अगर कर हूँ
5: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
6: खट खट हू दैट
7: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
8: Number 2.

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अगेन नंबर टू दिस वीक। माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है, वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म। एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं।
1: Hollywood should stop doing PR. It would be much better, and they should let their achievement speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price, and that is something that could be deeply upsetting, because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it, or have they been paid to like it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me, and because even I'm sometimes paying for it, so I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया, और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है। जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ। एंड देन और फिर एक और कहानी आती है। दिसंबर 5, 2025 धुरंधर, मार्च 19, 2026 धुरंधर 2। रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं, आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो। ऑर्गेनिक पीआर? अगेन एब्सोल्युटली जीरो। सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज। 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर, और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर 1 है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर। करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट। They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1.
2: Number 1.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
2: सर सर मुझे बात करनी है आपसे, ऑफिस में काम मैं करता हूँ और क्रेडिट मेरा टीम लीडर ले जाता है, मैं क्या करूँ?
3: तो आपका प्रॉब्लम है कि क्रेडिट आपका टीम लीडर ले जाता है। एक काम करो, बैंक जाओ, क्रेडिट उधर भी मिलता है।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। आपका इस्तकबाल करते हुए बहुत तरीके के प्रेम होते हैं। प्रेम अलग अलग चीजों पे आ सकता है, लेकिन देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो मेरे ख्याल से हर किसी के जहन में बसती है। लाल चंद फलक साहब का शेर याद आता है मुझे यहाँ पे, कहते हैं कि दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। वाह जी वाह, क्या तरीका है अपने देश प्रेम को प्रदर्शित करने का कि दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रही हूँ। हमारी एक स्कीम आई है, क्या आप लेना चाहेंगे?
2: लेकिन मुझे नहीं चाहिए।
1: ओके सर, बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का
3: हमेशा यही होता है, मैं ही फोन करता रहता हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ। अब ये भाई साहब करेंगे मुझे फोन?
4: वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
2: बात बताओ, इस नंबर से मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लेडी बोल रही थी।
4: यस सर,
2: जरा उनसे बात कराइए मेरी।
4: सर यहाँ पे तो अभी कॉल पे सारी लड़कियाँ हैं, मुझे मालूम नहीं है किससे आपकी बात हुई है। मैं आपके
2: बात बताओ, आप लोग किसी को ऑफर देते हो तो आप साथ में गाली देते हो?
4: सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे गाली तो किसी ने इनको यहाँ देता नहीं है, ऐसा होता नहीं।
2: मेरे पास फोन आया है यहाँ से स्कीम के बारे में,
4: राइट सर?
2: जब मैंने उसको मना किया है तो उसने मेरे को गाली दी पलट कर।
4: सर
2: तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर?
4: आई एम सो सॉरी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से
2: मैं
4: बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों कहा गया है हमारे कस्टमर को। बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का फोन।
1: सर वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
2: पास है ना नंबर, इसी नंबर से फोन आया था।
1: यस सर।
2: गालियाँ दे जा रहा है यार वो।
1: सर कौन?
2: अरे यार मेरे को नाम नहीं पता उसका, मेरे को गालियाँ सुनाई जा रहा है।
1: सर मैं उनसे क्षमा, ऐसा सर होता नहीं है हमारे बैंक में कभी
2: यार,
1: भी
2: क्या
1: मैं...
2: नहीं होता यार?
1: नहीं सर, इस तरह की बात कभी नहीं हुई सर आपके कहने से। हम तो ये
2: फोन आ रहे हैं बराबर, मेरे को गालियां दे रहे
1: सर। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है सर, यही तो हमारी सर्विस है।
2: झूठ बोलेगा,
1: ऐसी गलती अब आइंदा नहीं होगी। सर बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मुर्गा कहीं का।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये छोटा सा कॉल सेंटर मेरा ही है, ये सारी हरकतें मेरी हैं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार तुम लोग ना
4: सर बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे साथ सर हंस के बोल दीजिए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: This season at Kalyan Jewelers, enjoy up to 50% off on making charges. Visit your nearest Kalyan Jewelers store today.
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, Mirchi 1.
12: It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपको रूबरू कराएं हमारे आज के शायर एक ऐसे शख्स से जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने मुल्क को इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला जंग की वकालत की और महात्मा गांधी को स्वदेशी आंदोलन की राह सुझाई। मैं बात कर रहा हूं हसरत मोहानी साहब की। हसरत मोहानी साहब का जन्म उन्नाव में हुआ उत्तर प्रदेश में और उनकी मृत्यु लखनऊ में हुई। और उनकी एक गजल जो आपको बड़ी पसंद है मैं जानता हूं, वो है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। हाँ जी, ये गजल हमारे भारतीय हसरत मोहानी साहब ने ही लिखी। बहरहाल आपको सुनाए उनका हमारा एक बड़ा पसंदीदा शेर। कहते हैं कि तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, कोई और क्या उठा देता, तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। आए हाय, जब जिसको प्यार करो वही जाने को कह दे, उस महफिल में कभी मत बैठना दोस्त, तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। बहरहाल गजलों नगमों का सिलसिला रहेगा जारी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपके ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: Our business is our business, none of your business.
7: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
8: Qatar का number one radio station.
9: 89.6
10: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और कभी कभी मेरे ख्याल से रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए ये ख्याल आता है कि जिंदगी में किया तो आखिर किया क्या, है ना। वही ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, फिर कहीं वीकेंड में कहीं घूमने चले जाना, हल्का सा कहीं छुट्टी मना लेना, फिर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। अकबर इलाहाबादी साहब का एक बड़ा बेहतरीन शेर है, कहते हैं कि हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए। कारे नुमाया मतलब ऐसा क्या उखाड़ लिया हमने, क्या बेहतरीन काम कर दिया हमने, क्या ऐसा मेजर काम कर दिया। हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। और कभी कभी इसी चक्र से कि बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए, निकलने का मन सा करता है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से हम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
4: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुरशरण सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
3: शाहरुख खान इतना चार्म कहाँ से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: कौन है?
5: इशांत।
6: इशांत कौन?
5: इशांत गदाधारी भीम, इशांत।
6: खट खट, who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और जीवन के चंद सुखों में से ये भी एक सुख है जो आपके साथ बांटा जा सकता है।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और हाँ जी, महफिल में अब वक्त है कि आपका ताशी करे आपके नजर आज का पहला ताशी अनप्लग्ड। और ये शफकत अमानत अली साहब की आवाज में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है वो है इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड इट्स कॉल्ड आंखों के सागर।

अगर पता नहीं आपने बारीक डिटेल नोटिस करी हो कि ना करी हो, आंखों के सागर हैं लेकिन होठों के सागर हैं। सागर जो वर्ड है जिसमें ग पे नुक्ता लगा हुआ है, सागर लफ्ज का मतलब होता है प्याला। एग्जैक्टली, तो कितनी खूबसूरती से लिखा गया है कि आंखों के सागर होठों के सागर। नाउ यू नो समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग दैट सम ऑफ योर फ्रेंड्स आई गेस मे नॉट, है ना। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपके ताशी आपके साथ, क्यों बोला इससे इट्स हॉट।

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

0: हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: मुझे मेरी जॉब के लिए रोज 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, थक जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ओ मैन, ये तो बहुत टायरिंग है। तू कैब चला।

0: emergency helpline?
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: मुझे मेरी जॉब के लिए रोज 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। मुझे असरारुल हक मजाज साहब का शेर याद आता है, लखनऊ के हमारे शायर थे और एक खूबसूरत नज्म लिखी जिसमें उनका ये शेर आया कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। और नारी को हमेशा श्रृंगार रस से देखा गया है कई बार कविताओं में, लेकिन ये जो नारी के नए रूप देखने को मिलते हैं ये भी सराहनीय है और ये भी दिल के किसी हिस्से को छू जाते हैं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: हेलो
2: रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोलिए।
2: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ, आपका हमने प्रोफाइल देखा था, क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद आ गया है, चाह रहे थे थोड़ा सा आपके बारे में पूछना। आप मेरे को अपनी थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, एज बता देंगे कितनी एज है आपकी?
1: प्रोफाइल में लिखी हुई है, आपने देखी नहीं? 25 साल है।
2: अच्छा, वही मैं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। रेखा बता देंगे आप ये कितनी पढ़ी लिखी है? आप थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना?
1: मैंने बीए किया है।
2: अच्छा रेखा, आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि लड़के ने आपको पसंद कर लिया है और मैं चाह तो रहा था आपके पापा से बात करना, बल्कि लड़के के पापा भी आपको चाह रहे थे आपसे मिलना। प्लीज माइंड मत करना, आपके कोई टांग में तो चोट नहीं लगी? प्लीज इसको।
1: पर क्यों?
2: नहीं, मैं ऐसे ही पूछा था। अच्छा मेरे को रेखा एक चीज बता दीजिए, आप हील वील तो ज्यादा नहीं पहनती ना?
1: लेकिन क्यों? हील नहीं, तो आपको पूछना क्या है बताइए?
2: नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हील पहनती है क्या आप? नहीं पहनती? मैं
1: हील तो कभी पहनते भी हैं, कभी नहीं भी पहनते, लेकिन
2: ज्यादातर आप नहीं पहनते हैं।
1: ज्यादातर
2: ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये भाग के शादी करना चाहता है, तो मैं यही देख रहा था कि आपके कोई टांग में चोट तो नहीं है, कहीं हील वील तो नहीं पहनती, कहीं भागने में परेशानी हो जाए? तो इस लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे।
1: क्या बात कर रहे हैं आप?
2: नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इस लड़के के माँ बाप आएंगे, ये थोड़ा सा दौड़ा के देखेंगे, अगर आप भाग के शादी कर सकती हैं तो ही वो करेंगे ना, लड़के की बड़ी ख्वाहिश है। बल्कि इसके माँ बाप ये कहते हैं, हमारे चार लड़के थे, सबने ऐसी कर ली, हम चौथी शादी लड़के की करते हैं, हम लड़का भगा के करना चाहते
1: हैं।
2: मेरी बात सुनिए दोबारा, एक कमाल है, अभी से भाग गई यार।
1: हेलो,
2: देखा आपने फोन काट दिया यार, आप हील नहीं पहनती, आपके टांग में चोट लगी, भागने में प्रॉब्लम क्या
1: है? नहीं,
2: मैं दोबारा फोन मैं आप ही को तो करूंगा, लड़के ने आपको पसंद कर लिया, लड़के
1: नहीं बकवास।
2: अच्छा तो फोन मत काटिए, मेरी बात सुनिए रेखा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं आपकी शादी नहीं करा रहा, आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप मुर्गा बन गई हैं, और प्लीज गुस्सा नहीं, और फोन मत काटना यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
1: मेरी शादी के बाद मैं डैडी से ही करिएगा।
2: नहीं, मैं उनसे जरूर कर लूंगा, लेकिन डैडी से नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप प्लीज बोल दीजिए।
1: नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी।
2: मेरी बात सुनिए, आप अगर कुकड़ू को बोल देंगे मैं आपकी शादी करा दूंगा, जल्दी से करा दीजिए, मेरा मतलब जल्दी से बोल दीजिए।
1: कुकड़ू को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
6: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
7: हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और कभी कभी लगता है आप जिंदगी की ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपको ये लगने लग जाता है कि यार मे बी आई डोंट डिजर्व हैप्पीनेस, शायद खुशी, शायद आराम मेरी जिंदगी में लिखा ही नहीं हुआ है क्योंकि मिलता ही नहीं है। एक बड़ा ही मजेदार शेर मेरे सामने पड़ा अंबर बहराइची साहब का। मुमताज शायर रहे, विख्यात संस्कृत के विद्वान रहे, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और शेर ये बताता है कि भाई किस तरीके से दुख के आगे भी दुख ही है ना, ऐसा कुछ हाल है। कहते हैं, रोज हम जलती हुई रेत पे चलते ही न थे, रोज हम जलती हुई रेत पे चलते ही न थे, हमने साए में खजूरों के भी आराम किया। अब आप कारीगरी यहां देखें कि खजूर के पेड़ साया ही नहीं देते। रोज हम जलती हुई रेत पे चलते ही न थे, हमने साए में खजूरों के भी आराम किया। यही मैं कह रहा था दोस्त कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में सुख लिखा ही नहीं है, दर्द के बाद दर्द, लेकिन फिर लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
9: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
10: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, एक इंसान की टॉर उसके अंदर होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही आपके जीवन को वो इज्जत देती है जिससे आप अपने जीवन को जी पाते हैं। जैसे हमारे अमीर मिनाई साहब का एक शेर देखें, हैदराबाद के बड़े मशहूर शायर हुए अमीर मिनाई साहब, उनका शेर था कि किसी रईस की महफिल का जिक्र ही क्या है, किसी रईस की महफिल का जिक्र ही क्या है, खुदा के घर भी ना जाएंगे बिन बुलाए हुए। वाह जी वाह, जो टॉर है, जो एटीट्यूड है, अगर आपके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं रहा तो क्या फिर जीवन जिया। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बहरहाल, किसी रईस की महफिल का जिक्र ही क्या है, खुदा के घर भी ना जाएंगे बिन बुलाए हुए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं, मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
4: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: खट खट,
7: हू देयर?
6: बनता
7: बनता हूँ।
6: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
7: खट खट, हू देयर?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आपका ताशी पलटे अपने डायरी के सफे और कर दे आपके नजर। और इंसानी फितरत है ये, मेरे ख्याल से कुछ कुदरत का भी हिस्सा होगा इसमें कि जो ना करने को कहा जाए वही करने का मन सा करता है कि नहीं। इसमें कुछ तो बात है। अभी फर्ज करें मैं आपसे कहूं कि एक सफेद हाथी है जिसके बड़े बड़े कान हैं, उसके बारे में मत सोचना। क्या सोचा आपने? एक सफेद हाथी जिसके बड़े बड़े कान हैं, है ना। इंसानी फितरत है दोस्त ये। और इसी फितरत पे अमीक हनफी साहब हैं हमारे दिल्ली के, उनका एक बड़ा मशहूर शेर है, बड़ा प्यारा शेर है। कहते हैं कि फूल खिले हैं लिखा हुआ है तोड़ो मत, फूल खिले हैं लिखा हुआ है तोड़ो मत, और मचल कर जी कहता है छोड़ो मत। आए हाय, कितनी मतलब बेस कोर ह्यूमन इमोशन वाली बात कह दिया अमीक साहब ने। बहरहाल मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये पानी पूरी वाला हर बार सूखी पूरी का एक्स्ट्रा चार्ज करता है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, पानी पूरी गीली होती है, तू सूखी मांगेगा तो वो सुखाने का एक्स्ट्रा पैसा लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

पसंदीदा शायर थे जिनकी कई गजलें उन्होंने गाई, जिनका नाम था कतील शिफाई। अब कतील शिफाई साहब की एक गजल के दो शेर आपके लिए नजर करूंगा। तो दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। क्या मिला आखिर तुझे सायों के पीछे भाग कर, क्या मिला आखिर तुझे सायों के पीछे भाग कर, ऐ दिले नादा तुझे क्या हमने समझाया ना था। लाख समझाने पे भी कभी कभी दिल बात नहीं मानता, और फिर जब दर्द होता है तो रोता रोता हमारे पास वापस लौटता है। ओनली ऑन मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: हेलो,
2: उसको पैरों को पीछे लगा के उसको स्टीम को आगे करो।
3: हेलो,
1: हाँ जी,
3: ये भाई साहब, ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
1: कौन सी गाड़ी आपकी?
3: पैरों है, स्टीम है, एक सेकंड आप होल्ड करें।
2: अरे आ गई क्या? तो रात उठाइए वहाँ से, वो अब तक नहीं पहुँची। उसका फोन आया मेरे पास, रात उठाइए गाजियाबाद से उसने, दोनों आ गए।
3: हेलो रोहित जी, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का?
1: बताइए कैसे बताऊँ मैं हिसाब किताब, बताओ कौन सी गाड़ी आपकी?
3: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं चेक नहीं दे पाऊंगा, मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
1: ठीक है,
3: ठीक है, इसमें मेरी अभी तो आप लिखी
1: है, मॉडल
3: मॉडल आप लिख लो इसका। एक सेकंड,
2: आराम प्रकार से गाजियाबाद से पत्थर उठाइए, क्या मॉडल है उसका?
1: 2000।
3: यार रोहित, एक तो ये है कि ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह, और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं, 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो, किस तरह गाड़ी इंश्योर कर दो, ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं, बस बेच के फिर मेरा सैपा खत्म, मैं नहीं जानता कहाँ की गाड़ी थी कुछ था।
1: हेलो,
3: हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे भाई साहब?
1: अजय शर्मा।
3: अजय जी, ऐसा है मेरे पास 28 गाड़ियां हैं इस वक्त।
1: अच्छा, आपकी अपनी है?
3: अब उसमें आपको क्या लेना है यार, मेरी अपनी
1: नहीं, उसी
3: मैं आपको बताता हूँ, 3 गाड़ियां गाजियाबाद से उठाई हैं। अच्छा। 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं, बाकी सारी दिल्ली की हैं।
1: चोरी की है क्या?
3: हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
1: सारे मुझे देखना पड़ेगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
3: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो, आप मैं
1: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
3: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा?
1: बात करूंगा ना आपसे।
3: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
1: अरे सर, ऐसा काम नहीं है मेरा ना।
3: आप नंबर लिख लेना, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो, एक सेकंड रुकिए।
2: हाँ, अरे तो ना बिक रही तो गाड़ी को काट देना, उसके पार्ट्स बेच दे।
3: हाँ जी भाई, तो आप ये कर दोगे ना पूरे?
1: शाम को बताता
3: नहीं, आप वैसे कर दोगे ना पूरे?
1: क्या करूँ मैं, शाम को फोन करके बताऊँ।
3: अजय जी, ऐसा है, ये जितनी गाड़ियाँ है ना, ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा।
1: तो मैं आपको देखना चाह रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपको मुखातिब कराए हमारे आज के लव्स से जो है आतिश। आतिश का माने होता है आग, फायर, फ्लेम। और आतिश पे अगर मैं एक शेर आपको सुनाऊं तो गालिब से बेहतर और कौन होगा। मिर्जा गालिब का शेर नजर करता हूं जिसमें आतिश, फायर, फ्लेम का इस्तेमाल उन्होंने किया है। कहते हैं, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब की लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। आए हाय, कितनी सच्ची बात है। प्यार होना होता है तो हो जाता है, जबरदस्ती नहीं करी जा सकती प्यार के साथ। लेकिन कभी कभी सच्चाई, कभी कभी जिंदगी प्यार का गला घोट देती है। वो हम सबके साथ हुआ होगा। कुछ कुछ प्यार से आप अलग हुए होंगे क्योंकि ऐसा नहीं था कि कुछ खराब था, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी साथ में, है ना। तो जिंदगी है जिसका असर होता है प्यार के ऊपर, वरना इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, आतिश फायर की लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
4: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और गूगल फोटोज भी ना मुआ इतना परेशान करता है कभी कभी, और क्या मेमोरीज मेमोरीज करके पुरानी पुरानी यादें खुरेद लाता है, ऐसे ऐसे चेहरे दिखा देता है जिनको आप जमानों से भुला चले हैं और वो फिर आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं क्योंकि गूगल फोटोज को मेमोरीज दिखानी थी आपको, है ना। तो खैर इससे मुझे मीर तकी मीर साहब का शेर याद आता है, कहते हैं कि याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाजा, याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाजा, नादान फिर वो जी से भुलाया ना जाएगा। तो देख लो दोस्त, याद करना तो ठीक है लेकिन फिर भुला नहीं पाओगे, दिक्कत आ जाएगी, सोच लो। बिल्कुल सही बात कही है यार, यही होता है, बार बार ऐसी कोई शक्ल सामने आ जाती है और फिर रात और काली हो जाती है। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, साथ में बिता लेंगे यार ये वक्त भी। इट्स ऑल

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अजय देवगन, फर्ज करते हैं आप माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं। देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर इज केआरके, देयर इज करण जौहर एंड देयर इज काजोल। दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे।
4: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
3: बिकॉज दैट्स द गेम। हमको दो लोगों को तो बचाने ही पड़े।
4: मुझे बचाने नहीं है, आई ब्रेक द रूल। मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ।
3: ऐसा ही हूँ मैं।
4: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं।
3: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खटखट,
6: कौन है?
5: दवे।
6: दवे कौन?
5: The way you love me, आई हाय मर जावा।
6: खटखट, who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अब महफिल में वक्त है।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे जाने से पहले आखिरी ताशी अनप्लग्ड। हाँ जी, और अच्छा वक्त कैसे बीतता है बिल्कुल पता नहीं लगता। कुछ लोग जो आपके बड़े नजदीक होते हैं वो कैसे आपकी नजर से उतर जाते हैं या फिर आप उनकी, ये भी कभी कभी पता नहीं लगता। ये जो अगली गजल मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं मेरी बड़ी पसंदीदा है एंड यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि मेहदी हसन साहब की है। This is मुझे तुम नजर से।

इस हफ्ते का मिर्ची महफिल का सफर आ चुका है अपने मकाम तक. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची और अगली गजल पेशे खिदमत है सिर्फ आपके लिए. आपका दाशी था आपके साथ. इट्स हॉट.

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: सर बाइक चलाते चलाते मच्छर मुंह में चले जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या करूं?
2: अरे गोचू, जब तेरे को पता ही है मच्छर सामने से आ रहा है तो तू रॉन्ग साइड क्यों चला रहा है?
3: साले का खोपड़ी तोड़, साले का।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।